印度的立广播电台，听众朋友们，我们现在播送马哈拉什特拉邦的民间歌曲，请收听。

印度的李广播电台，听众朋友们，我们现在播送《咖瓦利歌曲》，请收听。

राजा जनक की यज्ञशाला जानकी के स्वयंवर के अनुरूप सजाई गई है। शुभ घड़ी जानकर राजा जनक ने सीता को यज्ञ स्थल पर बुला भेजा।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
3: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
4: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
2: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
5: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनयिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
2: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान वहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
6: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
2: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
7: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
2: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
8: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
9: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
10: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
8: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
11: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
8: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता सीईटीए इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
1: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमरीका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
2: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट एएफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1 रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों के

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमराह पेरिस में वीवाटेक समिट में शिरकत करेंगे। वजीर आजम फ्रांस की राजधानी में मुकीम भारतीय बिरादरी से भी खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। झारखंड की 2 और मिजोरम की 1 राज्यसभा सीट के लिए आज पोलिंग होगी। भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तजारती मुआहिदा इस साल 15 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी एशिया के तनाजे के खात्मे के लिए ईरान के साथ 14 निकाती अमन मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के आखिरी मरहले में कल रात पेरिस पहुंचे। फ्रांस की राजधानी पहुंचने पर होटल में जमा हुए भारतीय बिरादरी के अफराद ने जनाब मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पुरजोश हामियों ने वजीर आजम की हिमायत का इजहार करते हुए नारों के साथ उनका खैर मकदम किया। इसके साथ ही वजीर आजम ने पेरिस में अपनी सरगर्मियों का आगाज किया। पेरिस में वजीर आजम मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमराह वीवाटेक 2026 में शिरकत करेंगे। वीवाटेक समिट यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप प्रोग्राम है, जहां तवक्को है कि जनाब मोदी भारत के फरोग पाते हुए जिद्दत तराजी के निजाम और तकनीकी तरक्यात को उजागर करेंगे। वजीर आजम एक खसूसी तकरीब में भारतीय बिरादरी के अफराद से खिताब करेंगे। तफसील हमारे निमानीगर से।
1: वजीर आजम ने मोदी आज दो तरफा तजारत और इख्तराई शराकत दारियों को मजीद मजबूत बनाने की गरज से अपनी मसरूफियात को जारी रखेंगे। वो फ्रांस और यूरोप के कारोबारी रहनुमाओं के साथ एक खसूसी गोलमेज इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें भारत के तेजी से फैलते हुए सनअती और टेक्नोलॉजी शोबों में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस दौरे का मरकजी हिस्सा आज बाद में वीवाटेक होगा, जो यूरोप की मुमताज टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है। वजीर आजम मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों समिट में आला सतह की सरगर्मियों की क्यादत करेंगे। इन सरगर्मियों का इख्तिताम एक अहम कलीदी खिताब से होगा, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते हुए आलमी डिजिटल असर रसूख को उजागर किया जाएगा। ये वसी सफारती दौरा एक बड़े अवामी राबते के प्रोग्राम के साथ इख्तिताम पजीर होगा। वजीर आजम वसी पैमाने पर मुनाकिद होने वाली भारतीय बिरादरी की तकरीब में भी शिरकत करेंगे, जिसमें रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे और भारत की तहजीबी विरासत को उजागर किया जाएगा। पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: वजीर आजम मोदी G7 समिट में कई मुफीद और नतीजा खेज मीटिंगें करने के बाद पेरिस पहुंचे हैं। इन मीटिंगों में उन्होंने हुक्मरानी और पॉलिसी साजी के अहम उमूर पर भारत का मौकफ पेश किया और सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि उन्हें आलमी खुशहाली के लिए तरक्की पजीर ममालिक के साथ करीबी ताउन की जरूरत पर जोर देने का मौका भी मिला। G7 के आउटरीच इजलास में वजीर आजम मोदी ने G7 मुल्कों, भारत और आलमी खित्ते जुनूब की मुश्तरका ताकतों को यकजा करके राबते और तजारत को बढ़ाने के लिए एक फ्रेमवर्क तजवीज किया। उन्होंने तरक्की पजीर मुल्कों पर मगरबी एशिया के बहरान के तवील मुद्दती असरात पर तशवीश का इजहार किया। G7 समिट के मौके पर वजीर आजम मोदी ने कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की, जिनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टारमर, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की

0: यूरोपीय यूनियन की आला रहनुमा उर्सुला ओन डेर लेन, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान और कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी शामिल थे। सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद जनाब मोदी ने समुद्री अमले के अफराद की सलामती का मामला उठाया और जोर देकर कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहदे के नफाज के दौरान उनके तहफ़ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वजीर आजम मोदी के पेरिस के दौरे से तवक्को है कि खसूसी तौर पर टेक्नोलॉजी, इख्तरा और अवाम से अवाम के राबते के शोबों में भारत और फ्रांस के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। अपने दौरे के पहले दिन मोहतरमा मुर्मू मध्य प्रदेश के जिला बैतूल में रूहानी बेदारी के जरिए कबायली समाज को बख्तियार बनाने से मुतालिक एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: सदर जमहूरिया इंदौर पहुंचेंगी और फिर बैतूल का सफर करेंगी, जहां वो ब्रह्मा कुमारीज के जेर एहतमाम मुनाकिदा एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। बाद में मोहतरमा मुर्मू ओमकारेश्वर मंदिर जाएंगी और शाम की आरती में हिस्सा लेंगी। 19 जून को सदर जमहूरिया सिकल सेल एनीमिया के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर मुनाकिदा एक तकरीब में शिरकत करेंगी। 21 जून को मोहतरमा मुर्मू जबलपुर में योग के बैन अल-अक़वामी दिन की तकरीबात में हिस्सा लेंगी। वो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के 36वें जलसे तकसीम असनाद में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगी। इसके बाद वो नई दिल्ली रवाना होने से कबल कूनो नेशनल पार्क का दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया के बैतूल के दौरे के पेश नज़र जिला कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनावने ने सिक्योरिटी इंतजामात के तहत बाज़ बंदिशें नाफिज की हैं। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: झारखंड में आज राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और आजाद उम्मीदवार परिमल नाथवानी इलेक्शन लड़ रहे हैं। झारखंड कानून साज असेंबली में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती शाम 5 बजे शुरू होगी और इसके बाद नतीजे का ऐलान किया जाएगा। असेंबली के तमाम 81 रुकन असेंबली अपना वोट डालेंगे। फिलहाल हुक्मरान इत्तेहाद को 56 एमएलएज की हिमायत हासिल है, जिनमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआईएमएल शामिल हैं। 24 एमएलए की हिमायत वाली अपोजिशन ने आजाद उम्मीदवार परिमल नाथवानी की हिमायत की है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और बरतानिया ने ऐलान किया है कि जामी इक्तिसादी और तजारती मुआहिदा सीईटीए इस साल 15 जुलाई से नाफिजुल अमल हो जाएगा। तजारत व सनत की वजारत ने बताया कि समाजी तहफ़ से मुतालिक यह मुआहिदा, जिसे डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन डीसीसी भी कहा जाता है, इस पर भी उसी दिन से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तजारत और सनत की वजारत ने बताया कि डीसीसी के तहत छूट की मुद्दत को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है, जिससे भारत के आर्जी वर्करों को बड़ा फायदा है। इस मुआहिदे को सराहते हुए तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि सीईटीए और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के नाफिज होने से भारत की दरामदात के लिए नए मौके पैदा होंगे, क्योंकि भारत ने 99% टैरिफ लाइन्स पर फौरी ड्यूटी फ्री रसाई हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि इससे टेक्सटाइल, चमड़े, मरीन, इंजीनियरिंग और डब्बाबंद खुराक से मुताले शोबों को बगैर किसी नुकसान के और अपनी आलमी सतह की मसनुआत सप्लाई करने में मदद मिलेगी। नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तजारती मुआहदे से भारत और बरतानिया के दरमियान दोतरफा तजारत और सरमायाकारी को काबिल जिक्र तकवीत मिलेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस मुआहदे से भारतीय किसानों, वर्करों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और इख्तराकारों के लिए रोजगार के बहुत से मौके पैदा होंगे। गुज़श्ता 12 वर्षों के दौरान वज़ीर आज़म मोदी की दूर अंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए भारत ने नुमाया तरक्की की है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद अहम इक़दाम किए। आकाशवाणी न्यूज़ आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के पेश कर रहा है।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत की मजबूत और कसीर जहती हिकमत अमली, जिसमें मुनज़्ज़म सिक्योरिटी कार्रवाइयां, माली वसाइल की बंदिश और तेज़ रफ्तार तरक्कियाती प्रोजेक्टों का नफाज़ शामिल

0: थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, मगरबी सिंहभूम और खूंटी जिलों में माओ नवाजों के मजबूत ठिकानों को निशाना बनाया गया। 2025 में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सरहद से मुत्तसिल तकरीबन 50 किलोमीटर तवील और 37 किलोमीटर चौड़े पहाड़ी इलाके में चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बाकी मानदा माओ नवाज कारिंदों को शदीद नुकसान पहुंचाया। छत्तीसगढ़ के बस्तर के रहने वाले एक शख्स ने हुकूमत की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि मुल्क को नक्सलिज्म से पाक बनाने का वादा पूरा कर दिया गया है।
1: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो पूरे मोदी सरकार को और अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
0: जमीनी सतह पर इस मरबूत हिकमत अमली के नतीजे वाजह तौर पर सामने आए हैं। 2024 में 217 माओ नवाज हलाक किए गए, जबकि 2025 में ये तादाद बढ़कर 256 हो गई। साल 2026 में अब तक 26 माओ नवाज हलाक किए जा चुके हैं। इस दौरान कई बड़े नक्सल रहनुमा भी मारे गए। इन सिक्योरिटी इकदाम के नतीजे में नक्सल से मुतासरा इलाकों में तरक्की के एक नए सिलसिले का आगाज हुआ। झारखंड के जिला गुमला के रहने वाले टेम्बू ओराव ने कहा कि मोदी हुकूमत की तश्कील के बाद नक्सलिज्म बतदरीज खत्म हो गया और आज लोग अमन सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं।
2: एक दशक पहले हमारा गांव क्षेत्र पूरी तरह से नक्सलवाद के जब्त में था, हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं। बाकी गाँव का विकास हो रहा है, धीरे धीरे रोड सड़क बन गया है, काफी अच्छा है। अभी
0: आज नक्सलिज्म से पाक भारत की कहानी इस बात का सबूत है कि जमहूरियत, तरक्की और आईन ने कई दहाइयों पर मुहित तशद्दुद पर कामयाबी हासिल की है। दिल्ली से अक्षित वेदियान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
3: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पजश्कियान ने वर्चुअल वसीले से 14 निकाती मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को खत्म करना, अब नए हुरमुज को दोबारा खोलना और ईरान के जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक हतमी माहदे के लिए 60 रोजा मुजाकराती अमल शुरू करना है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने पेरिस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के दौरान इस मुफाहमतनामे पर ज़ाती तौर पर दस्तखत किए। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक की है कि मुफाहमतनामे के मतन को हतमी शक्ल देकर दोनों फरीकों की जानिब से दस्तखत कर दिए गए हैं। इस माहदे के तहत अमरीका अपनी बहरी नाकाबंदी और मुतल्लिका पाबंदियों को खत्म करने का अमल शुरू करेगा, जबकि ईरान इब्तदाई 60 रोजा मुद्दत के लिए अब नए हुरमुज से तजारती जहाजों की महफूज और बिला मुआवजा आमदोरफ्त को यकीनी बनाएगा। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान लखनऊ में 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 49 ओवर 5 गेंद में 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 रन और ईशान किशन ने 125 रन बनाए। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
4: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, G7 इजलास में मोदी और ट्रंप की दोतरफा मुलाकात। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अबनाए हुरमुज का खुला रहना दुनिया के लिए इंतहाई जरूरी है। उन्होंने भारतीय मल्लाहों के तहफ्फुज़ पर भी जोर दिया। सदर ट्रंप ने वजीर आजम मोदी की तारीफ की। रोजनामा प्रताप ने अपने सफे अव्वल पर डॉ जितेंद्र सिंह के बयान को नुमाया तौर पर शाया करते हुए सुर्खी लगाई है, विकसित भारत के लिए रियासतों को मरकज की अच्छी हुक्मरानी की पहल को अपनाना चाहिए। इसी अखबार ने मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान के बयान को नुमाया किया है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को आवामी तहरीक की शक्ल दी। रोजनामा इनकलाब ने फीफा आलमी कप से मुतालिक खबर को शाये करते हुए लिखा है, फुटबॉल के आलमी मेले में सितारे जगमगा उठे।
3: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमराह पेरिस में वीवा टेक समिट में शिरकत करेंगे। वजीर आजम फ्रांस की राजधानी में मुकीम भारतीय बिरादरी से भी खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। झारखंड की 2 और मिजोरम की 1 राज्यसभा सीट के लिए आज पोलिंग होगी। भारत बरतानिया जामे इकतसादी और तजारती माहदा इस साल 15 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी एशिया के तनाजे के खात्मे के लिए ईरान के साथ 14 निकाती अमन माहदे पर दस्तखत किए हैं। और मर्दों की क्रिकेट में भारत ने 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसमें आज आप सुनेंगे गणेश प्रसाद मिश्रा का गायन ठुमरी राग मिश्र भैरवी में। तबले पर संगत की है मिहिर कुमार नट्टा ने और सारंगी पर है शंभू सिसोदिया।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप गणेश प्रसाद मिश्रा का गायन सुन रहे थे राग मिश्र भैरवी में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उद्योग पत्रिका। नमस्कार, उद्योग पत्रिका में आप सबका स्वागत है। सुनिए श्री अभिषेक शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFO, विनिर्माण वित्त विशेषज्ञ से कमल किशोर की ये बातचीत।
1: हम आपका अभिषेक जी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं।
2: नमस्कार कमल जी, थैंक यू सो मच।
1: अभिषेक जी, आजकल देखा जाता है कि जो व्यवसाय में रोज रोज कभी कभी परिवर्तन होते हैं और उसके साथ में हमें चलना पड़ता है, बिजनेस एक्सेलेंस के लिए इसमें कई प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है, कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, रणनीति बनानी पड़ती है, लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी बात होती है वो है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, वित्तीय रणनीति हम कैसे बनाए इसके लिए, तो आप इसे किस प्रकार से परिभाषित करेंगे?
2: कमल जी, आपने एकदम सही कहा कि अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें अलग अलग तरह से हमको करना चाहिए और इसमें कुछ बातें बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली होती हैं कि पहली बात तो हम जो भी कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा आने वाले समय में, हमारे 3 साल 5 साल में, उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आने वाला है। सो ROI जिसको कहते हैं, ROI इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए हमको एक प्लान बना के चलना पड़ता है। अगर एक होता है इमोशनल डिसीजन और एक होता है फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन को इमोशनल डिसीजन से पहली बात तो अलग रखना चाहिए। जस्ट बिकॉज हमारे पूर्वज एक तरह से या हमारे पिता एक तरह से कर रहे थे तो आज के संसार में क्या वो सही है? आज मैं देखता हूं कई सारी MNCs हैं और कई MSME कंपनी है, यानी कि छोटी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जिसको कहते हैं, वो कई बार फैमिली रन एंटरप्राइज की तरह पुराने ढंग से भी करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स और पूरी तरह प्लानिंग नहीं करते और वहीं पे उनकी कई बार गलती हो जाती है।
1: यानी कि वो जो इन्वेस्टमेंट होती है या फिर जो सेविंग्स होती है या फिर जो प्लानिंग होती है वो ट्रेडिशनल तरीके की होती है, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, नई सोच नई तकनीक को अपना नहीं पाते हैं।
2: आज के दिन में जैसे आपने टेक्निक की बात करी, AI एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसको हमको यूज करना चाहिए। AI से बचना नहीं चाहिए क्योंकि AI हमारे साथ हमारे जीवन में है। इसको हम अच्छे तरह से प्रयोग कैसे कर सकते हैं एंड अगर हम सही तरह से बजट करें, जैसे आपने बजट की बात करी, हम कंट्री का भी बजट, देश का भी बजट बनाते हैं, उसी तरह हमको हर कंपनी का बजट बनाना चाहिए
1: जी,
2: और 3 साल का एक समय लेके चले कि 3 साल में हमको ये इस प्रॉफिटेबिलिटी पे पहुंचना है। मतलब कोई भी कंपनी आज अगर स्टार्ट हो रही है तो उसको 3 साल में टर्न अराउंड करना है।
1: हम सबके दिलो दिमाग में भी ये बसा हुआ है कि हमें एक विकसित भारत बनाना है 2047 तक, तो इसमें वित्तीय यानी कि फाइनेंस का किस प्रकार का रोल होगा?
2: देखिए, अगर विकसित भारत की बात करें तो इकोनॉमी जो होती है वो एक किसी भी कंट्री की रीढ़ होती है, किसी भी देश की बैकबोन होती है। इकोनॉमी पे फोकस करना सबसे बड़ा उसका काम है। अगर हमको विकसित भारत करना है तो इकोनॉमी हर तरह से आती है। इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास सही ढंग से इन्वेस्टमेंट्स आए, बाहर का इन्वेस्टमेंट भी आए, और खाली हम बाहर की कंपनी को अपने यहाँ पे तो जगह दे रहे हैं पर हमारी खुद की कंपनियों को भी MNCs बनना चाहिए। हमारी कंपनियां बाहर जाके व्यवसाय करें, बिजनेस करें और वहां पर कमाई करें, वो बहुत जरूरी है
1: जी। और इसके लिए जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने हर बार स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया है, हर जगह स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है, वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल जो हेल्प होता है, असिस्टेंस होता है, उसके भी सरकार की ओर से भी मदद की जाती है। तो जो व्यवसाय में जो उत्कृष्टता है, बिजनेस एक्सेलेंस है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए किस प्रकार की वित्तीय रणनीतियां अपनाई जाए?
2: बिजनेस एक्सेलेंस या बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए फाइनेंशियल एक्सेलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है और फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आज के दिन में कई सारे CFOs, कई सारे सलाहकार मौजूद भी हैं। अगर मैं ये स्पेशली कहना चाहूंगा उन स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज से जो फुल टाइम CFO नहीं भी रख सकते हैं, एटलीस्ट एक सलाहकार जरूर रखना चाहिए। जिस प्रकार हमारे पास एक पहले डॉक्टर होता था हमारी हेल्थ देखने के लिए, उसी तरह हमारे पास फाइनेंशियल हेल्थ देखने के लिए भी एक सलाहकार होना चाहिए। विकसित भारत की अगर हम बात करते हैं तो विकसित भारत के लिए कई सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आई हैं, जैसे गिफ्ट सिटी की बात कर सकते हैं हम जो गुजरात में है, वहां पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इट इज ट्रीटेड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसमें टैक्स में काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं और फेमा के रूल्स काफी चेंज हो चुके हैं। अब हमको काफी आसानी है हमको अगर हम बाहर कहीं इन्वेस्ट करना चाहें और बाहर से कुछ हम कमाना चाहें तो, सो फॉर इंडियन कंपनीज ऑल्सो बहुत ईजी हो गया है बाहर निवेश करना, आउट ऑफ कंट्री निवेश करना
1: जी।
2: और स्मॉल कंपनीज के लिए या किसी भी कंपनी के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसको मैं बोलता हूँ RCEP। ये बेसिकली इसको अगर हम बड़ा करें, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन वाइड क्या करना चाहते हैं और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। R का मतलब होता है रिस्क, जैसे आपने बोला रिस्क, तो हमको लिखना चाहिए कि इस ऑब्जेक्टिव को पाने में क्या क्या कठिनाई आ सकती है, वो सब आपका रिस्क है। A का मतलब होता है

0: अकाउंटेबिलिटी, उसमें आपको अकाउंटेबल होना चाहिए कि एक एक डिपार्टमेंट की क्या अकाउंटेबिलिटी है उन सबको पता हो। एस का मतलब होता है स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी बनाइए जिसके हिसाब से आप वो रिस्क को पार कर सकें। और पी का मतलब होता है प्लान, अगर आप प्लान करके चलते हैं और एक एक चीज का, जैसे हमने बताया 3 साल के अंदर में, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी कंपनी ब्रेक इवन कर सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी ला सकती है, कोई नई से नई कंपनी भी।
1: मुद्रा लोन तो ये किस प्रकार से मददगार साबित हो सकता है छोटी छोटी कंपनियों के लिए खासकर?
0: देखिए, छोटी कंपनियों के लिए मुद्रा लोन एक बहुत बड़ा लाइफलाइन है, ये एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। और जिस भी कंपनी को, ये छोटी कंपनी है जिसको जरूरत है बहुत ज्यादा, ये उसका उपयोग ले सकते हैं। वैसे आज के दिन में हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, हमारे पास मुद्रा लोन तो है ही, पर कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया था फैमिली ओरिएंटेड कंपनीज, उनको कभी डाइल्यूशन का भी सोचना चाहिए। 5-7% डाइल्यूट करके अगर हम अच्छी इक्विटी ला सकें या अच्छे लोग ला सकें, प्रोफेशनल्स ला सकें, शायद अच्छा हो सके।
1: स्टार्टअप्स के विकास के लिए या डेवलपमेंट के लिए कई प्रकार की रणनीति बनाई जाती है, इन स्टार्टअप्स के लिए रणनीति, वित्तीय रणनीति कितना मायने रखती है?
0: स्टार्टअप्स के लिए कोई भी वित्त रणनीति या फिर बिजनेस एक्सीलेंस की बात करें या फाइनेंशियल एक्सीलेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्टार्टअप का जो भी निवेश कर रहे हैं स्टार्टअप में इनिशियली, वो इसीलिए करते हैं कि वो उससे फायदा ले सके, उससे 2 साल में 3 साल में उसका कुछ बेनिफिट ले सके और उसकी जो वैल्यूएशन है वो बढ़ सके।
1: जी जी,
0: सब इसी के लिए करते हैं। आज के दिन में स्टार्टअप्स को 2 चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, एक टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना चाहिए, कोई भी स्टार्टअप बिना टेक्नोलॉजी के ना चले और ना ही आप उसको चलाएं। टेक्नोलॉजी का सहयोग जरूर लें, अगर आपकी पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है तो एटलीस्ट टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट जरूर होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करना है और ये देखना है कि आज हमारे यहाँ क्या परेशानी है, उस परेशानी को अगर आप दूर कर सकें, यू कैन डू एनीथिंग। अगर मैं फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात करूं तो सी ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले जो हमारी इकोनॉमी थी और आज जो इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी है इंडिया की, वो तो बहुत ज्यादा बदल गई है। और AI की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो जमीन आसमान का फर्क।
1: अभिषेक शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने वित्तीय मैनेजमेंट के विषय में, बिजनेस एक्सेलेंस किस प्रकार से बना जाए, किस प्रकार से किया जाए, इन सब के विषय में आपने विस्तार से बातें की, जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुनिए वार्ता, वार्ताकार हैं अनुपमा गोरे।
3: आज का हमारा विषय है भारत की नवीनतम औद्योगिक नीतियाँ और विकास की वर्तमान स्थिति। आज का भारत केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि विश्व में तेजी से विकसित होती एक औद्योगिक और तकनीकी शक्ति के रूप में उभर रहा है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों, नई तकनीकों, डिजिटल परिवर्तन और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता ने भारत की औद्योगिक नीतियों को भी नई दिशा और गति प्रदान की है। यदि हम भारत के औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति को समझना चाहें तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि पिछले एक दशक में देश ने औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन और पड़ाव देखे हैं। भारत सरकार ने विनिर्माण, अवसंरचना, नवाचार, हरित ऊर्जा और डिजिटल तकनीक पर विशेष बल दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत आज विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है और वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य और गंतव्य बनकर उभरा है। देश को औद्योगिक प्रगति का महत्व केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है बल्कि यह रोजगार, निर्यात, तकनीकी उन्नति और क्षेत्रीय विकास को भी प्रभावित करता है। भारत की नवीनतम औद्योगिक नीतियों में सबसे प्रमुख पहल आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा रही है। इस पहल का उद्देश्य देश को उत्पादन, तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में हर प्रकार से आत्मनिर्भर बनाना है। COVID-19 महामारी के दौरान यह स्पष्ट हो गया था कि अत्यधिक विदेशी निर्भरता किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिरता के लिए चुनौती बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए। इसका लक्ष्य केवल आयात को कम करना नहीं बल्कि भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करना भी है। इसी दिशा में मेक इन इंडिया पहल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। रक्षा उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी और रेलवे जैसे अनेक क्षेत्रों में निवेश के अवसर बढ़े हैं। मोबाइल फोन निर्माण इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां भारत आज दुनिया के प्रमुख विनिर्माण केंद्रों में गिना जाने लगा है। कई वैश्विक कंपनियों ने भारत में उत्पादन इकाइयां स्थापित की हैं, जिससे देश की क्षमता के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। भारत सरकार की एक और महत्वपूर्ण नीति है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, अर्थात PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस योजना का मूल उद्देश्य घरेलू उत्पादन बढ़ाना और वैश्विक प्रतियोगिता में भारतीय उद्योगों को सक्षम बनाना है। इस नीति के तहत उन कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाता है जो

0: भारत में उत्पादन बढ़ाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण, दवा उद्योग, दूर संचार और सौर ऊर्जा, ऑटोमोबाइल जैसे उद्योग जगत के अनेक क्षेत्रों को इससे लाभ मिला है। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है और अब वह केवल उपभोक्ता बाजार ही नहीं बल्कि उत्पादक राष्ट्र के रूप में भी उभर रहा है। यदि हम आधुनिक औद्योगिक विकास की बात करें तो सेमीकंडक्टर उद्योग की चर्चा आवश्यक हो जाती है। आज की डिजिटल दुनिया में सेमीकंडक्टर को तकनीक की विकास की रीढ़ माना जाता है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, चिकित्सा उपकरण और रक्षा प्रणाली सभी में इसका उपयोग होता है। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की है ताकि देश में चिप निर्माण उद्योग विकसित किया जा सके। यह पहल भारत को उच्च तकनीकी विनिर्माण के क्षेत्र में नई पहचान देने की क्षमता रखती है। औद्योगिक विकास केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं होता। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला यह क्षेत्र ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ता है। सरकार ने MSME के लिए आसान ऋण, डिजिटल प्लेटफॉर्म, तकनीकी सहायता और बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में अनेक योजनाएं लागू की हैं। डिजिटलीकरण ने छोटे उद्योगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में मदद की है। भारत की नवीनतम औद्योगिक नीति में हरित विकास और सतत औद्योगिकीकरण को भी प्रमुखता दी जा रही है। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और औद्योगिक क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगा बल्कि भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाएगा। भारत सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी विशेष बल दिया है। सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का विस्तार उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करता है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का उद्देश्य परिवहन लागत को कम करना और माल परिवहन को अधिक कुशल बनाना है। जब उद्योगों को बेहतर परिवहन और ऊर्जा सुविधाएं मिलती हैं, तब उत्पादन लागत घटती है और निर्यात क्षमता बढ़ती है। आज भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व की कई कंपनियां उत्पादन के लिए नए विकल्प तलाश रही हैं और भारत इस अवसर का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक स्थिरता, विशाल उपभोक्ता बाजार, कुशल युवा जनसंख्या और डिजिटल प्रगति भारत को निवेश के लिए अनुकूल बनाते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI में बढ़ोतरी इस विश्वास का प्रमाण है। हालांकि औद्योगिक विकास की इस यात्रा में कई चुनौतियां भी हैं। कौशल विकास की कमी, तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव, ऊर्जा लागत, पर्यावरणीय संतुलन और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं उद्योगों के सामने बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। इसके अलावा कई छोटे उद्योग अभी भी आधुनिक तकनीक और वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि सरकार, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थान मिलकर कौशल विकास और अनुसंधान को प्रोत्साहित करें। औद्योगिक विकास में डिजिटल परिवर्तन की भूमिका भी तेजी से बढ़ रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा और ऑटोमेशन उद्योगों की कार्यप्रणाली बदल रहे हैं। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान ने इस परिवर्तन को गति दी है। आज उद्योग केवल मशीनों पर आधारित नहीं है बल्कि डेटा और स्मार्ट तकनीक पर भी निर्भर होते जा रहे हैं। यह परिवर्तन उत्पादन को अधिक कुशल, सुरक्षित और प्रतिस्पर्धी बना रहा है। यदि वर्तमान स्थिति का समग्र मूल्यांकन करें तो कहा जा सकता है कि भारत औद्योगिक विकास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। देश की नीतियां अब केवल उत्पादन वृद्धि तक सीमित नहीं बल्कि नवाचार, पर्यावरणीय संतुलन, रोजगार और वैश्विक प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। वोकल फॉर लोकल से लेकर लोकल टू ग्लोबल तक की यात्रा यह दर्शाती है कि भारत अपने उत्पादों को विश्व स्तर पर स्थापित करने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहा है। भविष्य की दृष्टि से देखें तो भारत के सामने अपार संभावनाएं हैं। यदि नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन हो, उद्योगों को पर्याप्त तकनीकी और वित्तीय सहयोग मिले और युवाओं को उद्योग से जुड़े कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाएं, तो भारत विश्व का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन सकता है। आने वाले वर्षों में हरित उद्योग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आधारित विनिर्माण, रक्षा उत्पादन, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उद्योग और डिजिटल सेवाएं भारत के औद्योगिक विकास के प्रमुख स्तंभ बन सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि भारत की नवीनतम औद्योगिक नीतियां देश को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप में सक्षम और वैश्विक प्रतियोगिता में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। वर्तमान औद्योगिक स्थिति आशाजनक है लेकिन इसे और मजबूत बनाने के लिए निरंतर सुधार, नवाचार और समावेशी विकास की आवश्यकता होगी। यदि सरकार, उद्योग और समाज मिलकर आगे बढ़े तो वह दिन दूर नहीं जब भारत केवल विश्व का सबसे बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्रों में भी गिना जाएगा।
1: इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। वाचक स्वर शालिनी मित्तल और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंधगोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस, फ्रांस से महेश सोपड़े।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबा झारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

만든 FM गोल्ड 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं घर आंगन कार्यक्रम और घर आंगन कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त अमित कमल आपका स्वागत करती हूं। कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार। और दोस्तों इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रेस चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर भी। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव से बड़ा शिक्षक इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आप भी अपने अनुभव से सीखिए और तरक्की कीजिए। और ये जो कार्यक्रम है घर आंगन कार्यक्रम, जिसमें हम आपके घर की और आपके हित की बात करते हैं।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म चरित्रहीन से। घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, और घर आंगन कार्यक्रम में हम रोजाना आपके लिए योग से जुड़ी हुई बातें लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करीब ही है। और दोस्तों, ऑफिस में काम कर करके हम थक जाते हैं, पर समझ में नहीं आता कि हम समय कैसे निकालें। उसी पर आज हम बात करेंगे कि आप ऑफिस में योगा कैसे कर सकते हैं। ऑफिस में योगा करना ऊर्जा बढ़ाने, कमर दर्द या कंधे के दर्द से राहत पाने का एक फायदेमंद तरीका हो सकता है। जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं और थोड़ा आराम करना चाहते हैं, तो आप वहीं बैठकर कई तरह के योगासन कर सकते हैं। आज हम आपके साथ कुछ योगासन साझा कर रहे हैं जो आपके ऑफिस में काम करने वालों के लिए एकदम सही है, ताकि वो आप अपने ब्रेक टाइम का भरपूर फायदा उठा सकें। सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको कपड़े बदलने की भी जरूरत नहीं है। जो आपने ऑफिस के कपड़े पहने हैं, उन्हीं में आप ये आसन कर सकते हैं। और ऑफिस में किए जाने वाले इन योगासन में से किसी को भी करने से पहले दोस्तों, कुछ सेकंड के लिए आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आप इसके लिए कर सकते हैं बैठे बैठे ट्विस्ट। जी हाँ, डेस्क पर बैठकर योगाभ्यास करने का एक बेहतरीन तरीका क्या है दोस्तों, एक साधारण बैठे हुए ट्विस्ट से शुरुआत करें। सबसे पहले आपको कुर्सी पर पीठ टिकाकर बैठना है। सांस लेते हुए अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाएं और सांस लेते हुए दाईं ओर मुड़ें। सहारा लेने के लिए दोनों हाथों को दाईं ओर की ओर आर्म रेस्ट पर रखें। अगर कुर्सी में आर्म रेस्ट नहीं है, तो आप दाहिना हाथ सीट पर अपने कूल्हे के पीछे रखें और बायां हाथ अपनी दाहिनी जांग पर रखें। हर सांस के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, जिससे आपका शरीर आसन में और गहराई तक खिंच सके। प्रत्येक तरफ 60 सेकंड तक आसन को रोकें और फिर दूसरी तरफ दोहराएं। और एक और आसन है दोस्तों, कंधे को ऊपर नीचे करना। सांस लेते समय अपने कंधों को कानों की ओर ऊपर उठाएं और फिर नीचे लेकर जाएं। सांस छोड़ते समय उन्हें नीचे और आगे की ओर ले जाएं। इस क्रिया को इसी दिशा में दो बार दोहराएं और फिर विपरीत दिशा में करें। बैठकर पीठ झुकाने वाला आसन भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए टीम के साथ आपको कई बार ऐसा होता है कि लर्निंग सेशन के बाद थोड़ी बदहजमी महसूस होती है, तो फैन पोज पेट को हल्का सा स्ट्रेच देता है। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। अपने कुर्सी के अगले किनारे पर बैठें और अपने पैरों को फर्श पर रख लें। अपनी पीठ कुर्सी से ऊपर उठी हुई होनी चाहिए और आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए, मुड़ी हुई नहीं। आगे की ओर झुकें और अपनी बाहों को पीछे की ओर ले जाकर कुर्सी को पकड़ लें। अपनी कोहनियों को यथासंभव सीधा करने का प्रयास करें। तो है ना ये आसान से आसन जिन्हें आप ऑफिस में कर सकते हैं।

0: हेमलता की आवाज में ये गीत आपने सुना, आप तो ऐसे ना थे। घनांगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी

चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप। और दोस्तों, भारत की आज़ादी की तारीख 15 अगस्त सन 1947 है, लेकिन आज़ाद भारत का एक हिस्सा ऐसा भी था जहां आज़ादी के बाद भी कई बरस तक विदेशियों का शासन रहा और इसे आज़ाद होने में 14 बरस और लगे। ये हिस्सा था देश का तटीय इलाका गोवा, जो उस समय पुर्तगालियों के कब्जे में था। दरअसल सन 1946 में जब ये साफ हो गया कि अंग्रेज अब भारत में अधिक समय तक अपना राज शासन नहीं चला पाएंगे, तब राष्ट्रीय नेता ये मानकर चल रहे थे कि अंग्रेजों के साथ साथ पुर्तगाली भी गोवा छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी विचारधारा में यकीन रखने वाले राम मनोहर लोहिया इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। यही वजह है कि लोहिया ने 18 जून सन 1946 को गोवा पहुंचकर पुर्तगालियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में हजारों गोवा वासियों ने शामिल हुए और आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। हालांकि कई साल के संघर्ष के बाद गोवा को सन 1961 में आज़ादी मिली। 18 जून को गोवा की आज़ादी के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी वजह से हर साल 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आज है गोवा क्रांति दिवस।

सन 1971 में आई फिल्म पराया धन से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। दोस्तों, घर आंगन कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे डेज ऑफ द डे की और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में अक्सर लोग पिकनिक पर जाना पसंद करते हैं और प्रकृति के बीचों बीच बैठकर उस समय का आनंद उठाते हैं। इतना ही नहीं, अपने साथ बहुत सारे आउटडोर गेम्स भी लेकर जाते हैं। करीब एक सप्ताह पहले ही सभी जोरों शोरों से इसकी तैयारी करते हैं, पर आपको पता है इसके लिए भी एक खास दिन है जो है आज यानी 18 जून को। जी हाँ दोस्तों, 18 जून को हर साल विश्व पिकनिक दिवस मनाया जाता है और पिकनिक का नाम सुनते ही बच्चों और बड़ों के चेहरे पर बहुत सी बड़ी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन एक सवाल जरूर सबके मन में आता है, वो ये कि पिकनिक शब्द आया कहाँ से। दोस्तों, कहा जाता है कि पिकनिक शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति के बीच में बैठकर भोजन या नाश्ता करना। ऐसा भी कहा जाता है कि फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद ही ये ट्रेंड काफी पॉपुलर हुआ और पूरी दुनिया में इसे अपना लिया गया। आधुनिक पिकनिक का श्रेय फ्रांसीसियों को दिया जाता है, लेकिन वैश्वीकरण और व्यक्तिगत संस्कृतियों का भी इस पर व्यापक असर हुआ और लोकप्रियता भी हुई। जैसे जैसे पिकनिक की अवधारणा फैली, विभिन्न स्थानों पर अनेकों परंपराएं विकसित हुईं। विश्व भर में शायद ही कोई ऐसी संस्कृति हो जो अपने तरीके से पिकनिक ना मनाती हो। और पिकनिक की इतनी अच्छी सी जानकारी के साथ आपके लिए है एक प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज है आशा जी, दिलराज कौर व साथियों की। फिल्म का नाम है सत्य पे सत्ता।

एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन, और घर आंगन में घर के सभी विषयों पर बात हो और बच्चों पर बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, मेरठ के मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश पंजीकरण 10 जून से शुरू हो चुका है, जिसमें लगभग 350 छात्रों को प्रवेश देने का लक्ष्य रखा गया है। यूनिवर्सिटी भारतीय सेना के साथ मिलकर घुड़सवारी में एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा कोर्स भी इस बार शुरू कर रही है। ये देश में अपनी तरह का पहला कोर्स होगा। विश्वविद्यालय ने अपना प्रवेश प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है और इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। और आपको बता दें दोस्तों, आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई निर्धारित की गई है। इस बार यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी बड़ी राहत देते हुए विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश की व्यवस्था की है। इसके साथ ही स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को शैक्षणिक शुल्क में 100% तक छूट देने का प्रावधान भी रखा गया है। खेल यूनिवर्सिटी की ओर से पहली बार

सेना के घुड़सवारों को भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। घुड़सवारी में प्रवेश और प्रशिक्षण के मानक सेना के अनुरूप ही होंगे। और आपको बता दें, राष्ट्रीय पदक विजेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य उच्च स्तरीय प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों को तैयार करना है। ये पाठ्यक्रम राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। आवेदन करने के बाद यहां संभावित रूप से दोस्तों 20 जुलाई से 30 जुलाई के बीच फिजिकल फिटनेस टेस्ट आयोजित किए जाएंगे, जबकि अंतिम मेरिट सूची अगस्त में जारी की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट sportsuniup.com पर विजिट कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, sportsuniup.com।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आपने सुना मेरे हमदम मेरे दोस्त से। दोस्तों, हौसले बुलंद हों और मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मुश्किलें भी रास्ता छोड़ देती हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की पहचान बन चुकी लीला खटीक आज आत्मनिर्भरता की एक मिसाल हैं। पिछले 25-26 सालों से उनकी उसी जगह पर फलों की दुकान लगाने वाली लीला ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो समाज की हर महिला को प्रेरित करता है। एक समय था जब लीला के सामने परिवार का पालन पोषण और दो वक्त की रोटी का बड़ा संकट था। उन्होंने बेहद कम लागत के साथ फ्रूट बेचना शुरू किया, लेकिन उनकी मेहनत और सही समय पर मिली सरकारी मदद ने उनकी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल दी। लीला खटीक के इस कामयाबी के पीछे उनकी कड़ी मेहनत के साथ साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM का बड़ा योगदान रहा। लीला क्षेत्र की 10 महिलाओं के साथ मिलकर मधुर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। इस समूह के जरिए उन्हें बैंक से आर्थिक मदद मिलने शुरू हुई। लीला को शुरुआत में बैंक से बहुत छोटी राशि मिली। पहले 7,000 रुपए मिले, फिर 30,000 और फिर 60,000 रुपए की मदद मिली। इसके बाद धीरे धीरे ये मदद 8,00,000 रुपए तक पहुंच गई। दोस्तों, नियम ये है कि आप जैसे जैसे ईमानदारी से लोन की किश्त जमा करते जाते हैं, आपका क्रेडिट बढ़ता जाता है और बैंक आगे और भी मदद करता है। फलों के इस कारोबार और बैंक से मिली मदद के बूते लीला ने न सिर्फ आजादी पाई बल्कि एक माँ के रूप में अपने सारे कर्तव्यों को निभाया। उन्होंने अकेले अपने दम पर अपने 5 बच्चों की परवरिश की। आज उनके बच्चे सेटल हैं और फल बेचकर ही लीला ने अपना खुद का घर और मकान भी बनवाया है। उम्र

कि इस पड़ाव पर जब लीला को ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, लीला की ये कहानी संदेश देती है कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती। अगर जज्बा हो तो आप किसी भी उम्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

आशा जी की आवाज में ये गीत आपने सुना खुशबू फिल्म से। दोस्तों, एक समय था जब छुट्टियां शुरू होते ही सभी को नानी दादी के घर जाने की बड़ी दिलचस्पी होती थी। जैसे जैसे समय बदला, इसमें भी तकनीक ने अपनी जगह बना ली। जी हाँ दोस्तों, आजकल की छुट्टियों का ट्रेंड जो है तेजी से बदल रहा है। पारंपरिक रूप से नानी दादी के घर बिताए जाने वाली गर्मियों की छुट्टियों की जगह अब बच्चे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और रोबोटिक्स जैसे नए जमाने के स्किल्स सीखने जैसे कैंप्स में जाना पसंद करते हैं। माता पिता भी बच्चों को रचनात्मक और भविष्य के लिए तैयार करने वाले समर कैंप्स में भेजना पसंद कर रहे हैं। और इस बदलते ट्रेंड के प्रमुख कारण है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे तकनीकी रूप से मजबूत हों, ताकि वो आने वाले समय में तकनीक की दुनिया में पीछे ना रहें। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि कोडिंग और रोबोटिक्स से बच्चों की तार्किक क्षमता यानी लॉजिकल थिंकिंग और समस्या सुलझाने का जो कौशल है वो बढ़ता है। इसलिए भी माता पिता बच्चों को इन कैंप्स में भेजना ज्यादा पसंद करते हैं। और साथ ही माता पिता चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल पर गेम खेलने या टीवी देखने की बजाय कुछ नया और प्रोडक्टिव सीखें, जिससे वो उनके भविष्य में काम भी आए। दोस्तों, इन कैंप्स में बच्चे खुद से वीडियो गेम, वेबसाइट या छोटे रोबोट्स बनाना सीखते हैं और कैंप के आखिर में इन्हें सर्टिफिकेट भी मिलता है जो उनके बायोडाटा और भविष्य के लिए काम आता है। है ना फायदे का सौदा।

दें और इसे अच्छे से मिलाएं और इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल निचोड़ लें। फिर इसे किसी शीशी या एयरटाइट कंटेनर में भरकर 24 से 48 घंटे के लिए रख दें। ध्यान रहे कंटेनर या शीशी

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। घर आंगन कार्यक्रम में हर चीज की बात हो और आपकी सुंदरता की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे घर पर लौंग का मॉइस्चराइजर बनाना। जी हाँ, लौंग मॉइस्चराइजर बनाने के लिए आप जो है बताने से पहले उसके फायदे आपको बता देते हैं। लौंग मॉइस्चराइजर मुहासों, दाग धब्बों और झुर्रियों को दूर करने के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय है। इसे बनाने का सबसे आसान और असरदार जो तरीका है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके लिए एक छोटे बाउल में एलोवेरा जेल और गुलाब जल को अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें 6 या 8 लौंग को साबुत

आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताएं। नोट कर सकते हैं आप हमारा मेल आईडी fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे हैं हाथ की सफाई फिल्म से। और स्टूडियो की घड़ी हमें इशारा कर रही है आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो चला है। तो मेल आईडी एक बार फिर से नोट करें fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके प्यारे प्यारे संदेशों का इंतज़ार। इसी के साथ घर आंगन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: हर आंगन
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का ये सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर मिसाल एआई

की ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 1:10 हो रहे हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम एक ही फिल्म से का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सबका आज के इस प्रोग्राम में।

श्रोताओं, भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी हैं जो सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक युग बन जाती है। 1960 में रिलीज हुई मुगले आजम ऐसी ही एक फिल्म है जिसने भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन के आसिफ ने किया। अमन, कमाल अमरोही, वजाहत मिर्जा, एहसान रिजवी और के आसिफ की लिखी इस कहानी ने सलीम और अनारकली के प्रेम को ऐसे अंदाज में पर्दे पर लेकर आई कि आज भी इसका जिक्र होते ही फिल्म की यादें ताज़ा हो जाती हैं। एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ सत्ता और स्वाभिमान का संघर्ष, यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी रही। रिलीज के इतने वर्षों बाद भी मुगले आजम का जादू कम नहीं हुआ।

इस फिल्म की भव्यता, कॉस्ट्यूम्स, शानदार संवाद, दमदार अभिनय, खूबसूरत संगीत और बड़े बड़े सेट आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने उस दौर में चर्चा का विषय बने। लेकिन मुगले आजम सिर्फ अपनी कहानी के लिए ही नहीं बल्कि इससे जुड़े कई दिलचस्प किस्सों के लिए भी याद की जाती है। तो आइए दोस्तों, आज के इस शाही सफर में चलते हैं और बात करते हैं भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में से एक मुगले आजम की और जानेंगे इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें जो शायद ही आपने पहले सुनी होगी।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इन द प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो हमारी फिल्म है वो है मुगले आजम, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, अब बात करते हैं उन कलाकारों की जिन्होंने मुगले आजम के किरदारों को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। लेकिन मुगले आजम की शुरुआती स्टारकास्ट कुछ और थी। फिल्म पर काम 1940 के दशक में शुरू हुआ था और उस समय चंद्रमोहन, डीके सप्रू और नरगिस जैसे कलाकारों को लिया गया था। लेकिन 1947 में देश के विभाजन के बाद फिल्म का निर्माण रुक गया। बाद में जब फिल्म दोबारा शुरू हुई तो अकबर के रूप में पृथ्वीराज कपूर, शहजादा सलीम बने दिलीप कुमार और अनारकली के रूप में नजर आई मधुबाला। इसके अलावा दुर्गा खोटे, अजीत नाजिर, जॉनी वॉकर, बेबी तबस्सुम और शीला दलाया साथी कलाकारों के रूप में नजर आई थी। इस फिल्म को यादगार बनाने में कलाकारों की मेहनत का भी बड़ा योगदान रहा। फिल्म के क्लाइमेक्स में

काल कोठरी वाले सीन के लिए मधुबाला को असली लोहे की भारी जंजीर पहननी पड़ी थी। लंबे समय तक उन्हें पहनकर शूटिंग करने की वजह से उनके हाथों पर निशान तक पड़ गए थे। वहीं दिलीप कुमार और पृथ्वीराज कपूर ने भी अपने किरदारों को वास्तविक दिखाने के लिए भारी पोशाकों और कवच में शूटिंग की। के आसिफ अपने काम में किसी तरह का समझौता नहीं करते थे। पृथ्वीराज कपूर का सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाने वाले सीन को तपती धूप और गर्म रेत पर फिल्माया गया था। के आसिफ ने कहा था कि अगर तकलीफ ज्यादा हो तो इशारा कर दीजिएगा, शूटिंग रोक दी जाएगी। लेकिन पृथ्वीराज कपूर बिना रुके शॉट को पूरा किया। शॉट खत्म होने के तक उनके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ चुके थे। ये घटना बताती है कि उस दौर के कलाकार अपने किरदारों को जीवंत बनाने के लिए कितनी लगन से काम करती थी। शायद यही वजह है कि आज भी जब मुगले आजम का जिक्र होता है तो उसके कलाकारों के समर्पण को उतने ही सम्मान और प्यार के साथ याद किया जाता है जितना फिल्म के रिलीज के समय किया जाता था। और अब बात फिल्म के एक बेहद लोकप्रिय गीत मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। इस गीत को तैयार करते समय खास ध्यान रखा गया था कि इसमें पुराने दौर की ठुमरी और दादरा की झलक दिखाई दे। वहीं इस गीत में कथक की खूबसूरती को दिखाने के लिए नृत्य निर्देशक लच्छू महाराज जी ने मधुबाला को घंटों कथक का अभ्यास कराया ताकि गीत का हर भाव पर्दे पर परफेक्ट लगे। खास बात ये रही कि पूरे गीत की शूटिंग मधुबाला ने खुद की, किसी डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया। आइए सुनते हैं इसी सदाबहार गीत को।

श्रोताओं, इस गीत को सुनने के बाद आप खुद भी समझ गए होंगे कि इस गीत में और इसके दृश्य, जब ये नृत्य हो रहा था और मधुबाला जी ये नृत्य कर रही थी, तो आपने भी अगर ये फिल्म देखी होगी या ये गीत सुना होगा तो देखा होगा कि मधुबाला ने कितनी सुंदरता से इस कथक के भावों को उतारा है और कितनी सुंदरता से ये डांस को किया है। श्रोताओं, आगे बात करते हैं। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे हम सचमुच मुगल काल में पहुंच गए हैं। के आसिफ के परफेक्शन का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1952 में दोबारा शुरू हुई इस फिल्म को पूरा होने में करीब 8 साल लग गए। फिल्म में युद्ध के दृश्यों को वास्तविक दिखाने के लिए बड़ी संख्या में घोड़ों, ऊँटों और सैनिकों का इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं, कुछ दृश्यों के लिए भारतीय सेना की भी मदद ली गई थी। उस दौर में जब ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग एक या दो कैमरे से होती थी, मुगले आजम की कई दृश्यों को फिल्माने के लिए एक या दो नहीं बल्कि मल्टी कैमरों का इस्तेमाल किया गया था। यही वजह थी कि हर सीन बड़े पर्दे पर इतना प्रभावशाली दिखाई दिया। फिल्म के सेट, पोशाकें और गहनों पर भी खास ध्यान दिया गया था। देश के अलग अलग शहरों के कारीगरों ने मिलकर इन चीज़ों को तैयार किया था। हर छोटी सी छोटी चीज़ों में भी शाही अंदाज दिखाई दे, इसका पूरा ध्यान रखा गया था। अकबर का किरदार निभा रहे पृथ्वीराज कपूर के लिए उन्होंने लगभग 4,000 रुपये के खास जूते बनवाए थे। जब कैमरामैन आरडी माथुर ने आसिफ से कहा कि ये जूते तो पर्दे पर ठीक से दिखाई भी नहीं देंगे, तो आसिफ जी का जवाब था, मेरे अकबर को तो पता होगा कि उसने क्या पहना है। और वही एहसास उनकी चाल में एक मुगल शहंशाह की शान बनकर नजर आएगा। कहा जाता है कि फिल्म में दिखाई गई भगवान कृष्ण की मूर्ति भी शुद्ध सोने की बनी हुई थी। तो श्रोताओं, चलते हैं अगले गीत की ओर, लेकिन उस गीत से पहले सुनेंगे एक छोटा सा संदेश।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है मुगले आजम, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। तो श्रोताओं, चलते हैं अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है मुगले आजम। श्रोताओं, मुगले आजम का सबसे चर्चित सेट था शीश महल, जिसे बनने में लगभग 2 साल का समय लगा। के आसिफ को इसकी प्रेरणा जयपुर के आमेर किले के शीश महल से मिली थी, लेकिन उन्हें भारत में वैसा शीशा नहीं मिला जैसा वे चाहते थे, इसलिए विशेष शीशा बेल्जियम से मंगवाया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फिल्म को बेहतर बनाने पर था। वहीं फिल्म की लागत करीब 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी, जो उस समय के हिसाब से बेहद बड़ी रकम थी। एक समय तो ऐसा भी आया जब फिल्म के फाइनेंसर शाहपुर जी ने तय किया कि वो फिल्म का निर्देशन आसिफ से लेकर सोहराब मोदी को दे देंगे, लेकिन मधुबाला और दिलीप कुमार दोनों ने के आसिफ का साथ दिया और कहा कि फिल्म को पूरी वही करेंगे। मुगले आजम को हिंदी, तमिल और अंग्रेजी 3 भाषाओं में बनाया जा रहा था। हर दृश्य और संवाद को 3-3 बार शूट किया जाता था। इसी वजह से फिल्म की शूटिंग के दौरान इतने फुटेज रिकॉर्ड हुआ कि उससे कई और फिल्में बनाई जा सकती थी, लेकिन के आसिफ ने वही दृश्य चुने जो उनकी नजर में सबसे बेहतरीन थे। और शायद यही वजह है कि मुगले आजम सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक अध्याय बन गई। तो श्रोताओं, चलिए चलते हैं इसी फिल्म से एक और बेहतरीन गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, फिल्म का संगीत तैयार किया था नौशाद ने और गीत लिखे थे शकील बदायूनी ने। दोनों की ये जोड़ी उस दौर में कई यादगार गीत दे चुकी थी, लेकिन मुगले आजम उनके करियर की सबसे खास फिल्मों में गिनी जाती है। कहा जाता है कि जब के आसिफ इस फिल्म का सपना लेकर नौशाद के पास पहुंचे तो वे अपने साथ पैसों से भरा एक ब्रीफकेस भी ले गए थे। आसिफ चाहते थे कि फिल्म का संगीत ऐसा हो जिसे लोग बरसों तक याद रखें, लेकिन पैसों की बात सुनकर नौशाद नाराज हो गए। बाद में दोनों के बीच गलतफहमियां दूर हुई और फिर नौशाद ने इस फिल्म का संगीत तैयार करने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। इसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास बन गया। नौशाद ने फिल्म के संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत की मिठास, लोक संगीत की सादगी और वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा की भव्यता को खूबसूरती से पिरोया। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के गीत इतने महत्वपूर्ण थे कि वे फिल्म की कुल अवधि का लगभग एक तिहाई हिस्सा बन गए। फिल्म के अधिकांश गीतों को अपनी मधुर आवाज से सजाया था लता मंगेशकर ने, वहीं मोहम्मद रफी, शमशाद बेगम और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जैसे महान कलाकारों की आवाजों ने भी इस संगीत को और भी यादगार बना दिया। दोस्तों, मुगले आजम के संगीत से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा भी है कि आसिफ चाहते थे कि फिल्म में तानसेन की आवाज के लिए किसी ऐसे कलाकार को लिया जाए जिसका शास्त्रीय संगीत में कोई मुकाबला न हो। नौशाद इसके लिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का नाम सुझाया, लेकिन शुरुआत में उस्ताद फिल्म के लिए गाने को तैयार नहीं हुई। काफी कोशिशों और बातचीत के बाद वे राजी हुए। कहा जाता है कि उन्होंने इतनी ज्यादा फीस मांगी जिसे सुनकर उन्हें लगा शायद के आसिफ पीछे हट जाएं। उस दौर में 25,000 रुपए बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, लेकिन उस्ताद की बात सुनते ही के आसिफ ने बिना एक पल गवाए अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और कहा, बस सिर्फ 25,000 रुपए मंजूर है। इसके बाद उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने फिल्म के लिए प्रेम जोगन बनके और शुभ दिन आयो राज दुलारा जैसी यादगार रचनाएं रिकॉर्ड की, जो आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत के इतिहास में विशेष स्थान रखती है। तो चलिए सुनते हैं एक और यादगार गीत।

दोस्तों, मुगले आजम कितनी शानदार फिल्म थी इसका अंदाजा इसकी रिलीज के समय दर्शकों के उत्साह से भी लगाया जा सकता है। साल 1960 में जब फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई तो सिनेमा घरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई। तेज बारिश भी लोगों के उत्साह को कम नहीं कर पाई। उस दौर में 75 पैसे और 2 रुपए से मिलने वाले टिकट ब्लैक में 100 से 200 रुपए तक बिके थे। 4 अगस्त 1960 को जब फिल्म का भव्य प्रीमियर हुआ तो इसके प्रिंट को हाथी पर रखकर मराठा मंदिर थिएटर तक लाया गया। वो अपने आप में एक अनोखा दृश्य था और पूरे शहर में इसकी चर्चा थी। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के भव्य प्रीमियर में इसके 2 सबसे बड़े सितारे दिलीप कुमार और मधुबाला मौजूद नहीं थे।

श्रोताओं, इस फिल्म को 3 अवार्ड्स मिले। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया, साथ ही फिल्म को बेस्ट फिल्म, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट डायलॉग के फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। फिल्म की लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि मराठा मंदिर सिनेमाघर में ये लगभग 77 वीक तक हाउसफुल चली।

0: इसी के साथ ही आज के सफर को यही विराम देते हैं। अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अभी अनुमति दीजिए, हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद।
0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के 1:40 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल वीवाटेक सम्मेलन विच शामिल होणगे। वह अज पैरिस विच फ्रांस के प्रमुख व्यापारक आगुआं नाल उच्च पद्धरी मीटिंगां भी करनगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत के टीचे को हासिल करने लिए जरूरी है कि समाज का कोई भी वर्ग विकास यात्रा में पिछे ना रह जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतुव्रत बैनर्जी को पश्चिमी बंगाल विधानसभा में विरोधी धिर का नेता नियुक्त करने के फैसले से कोई अंतरिम रोक लाने से इनकार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बीती रात एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। FAH महिला नेशनस कप हाकी विच भारत आज उरुग्वे नूं 3-2 नाल हरा के सैमीफाइनल च पहुंच गया है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल वीवाटेक सम्मेलन विच शामिल होणगे। उह भारत दी तकनीकी तरक्की ते नवीनता नूं दुनिया सामने रखणगे। इह यूरोप दा सब तों वड्डा तकनोलोजी ते स्टार्टअप इकट्ठ है। साडे पत्रकार ने दस्सिया कि श्री मोदी एक विशेष समागम विच भारतीय भाईचारे दे मैंबरां ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਆਲਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਦੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਫਰਾਂਸ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਫਰਾਂਸ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ

0: अलामत है। मरकज 2026-27 के माली साल के दौरान देही इलाकों में 26,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें तामीर करेगा। देही तरक्की की वजारत के मुताबिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और देही इलाकों में मुतल्लिका सरगर्मियों के लिए 18,900 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। आला सतह की एक मीटिंग में देही इलाकों में सड़कों से मुतल्लिक प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओडिशा और मध्य प्रदेश के 5 रोजा दौरे पर आज सुबह इंदौर पहुंची। उनका देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे पर गवर्नर मंगूभाई पटेल और वजीर आला मोहन यादव और आला हुकाम ने शानदार इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू बैतूल में रूहानी बेदारी के जरिए कबायली मुआशरे को बाइख्तियार बनाने के एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। झारखंड में आज राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और आजाद उम्मीदवार परिमल नाथवानी मैदान में हैं। पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगी, जबकि वोटों की गिनती शाम 5 बजे शुरू होगी और इसके बाद नतीजे का ऐलान किया जाएगा। असेंबली के तमाम 81 अरकान के अपना वोट डालने का इम्कान है। मिजोरम में राज्यसभा की वाहिद सीट के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। इस चुनाव में हुक्मरान जोराम पीपल्स मूवमेंट और अपोजिशन मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवारों के दरमियान सीधा मुकाबला है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली में अवामी बहबूद के 3 रोजा कैंपों का इफ्तिताह किया। ये कैंप वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के मुहिम से तरगीब हासिल करके शुरू किए गए हैं। कैंप के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि हुकूमत ने कौमी राजधानी के 42 मकामात पर इन कैंपों का इनेकाद किया है। उन्होंने यह भी कहा कि शहरी, मरकजी और दिल्ली हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारे की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज तृणमूल कांग्रेस के एमएलए ऋतब्रता बनर्जी, जो इस पार्टी से अलग हो गए हैं, उन्हें असेंबली में अपोजिशन रहनुमा के तौर पर मुकर्रर करने से मुतालिक मगरबी बंगाल के असेंबली के स्पीकर रथिंद्रा बोस के फैसले के बारे में कोई अबूरी राहत देने से इनकार कर दिया है। टीएमसी एमएलए सुभान देव चट्टोपाध्याय की तरफ से दाखिल की गई एक दरखास्त की समाअत करते हुए, जिसमें बनर्जी की नामजदगी और तकर्रुर को रद्द किए जाने को चैलेंज किया गया है, जस्टिस कृष्ण राव ने स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मुद्दा अलह को 3 हफ्ते के अंदर अंदर अपने हलफनामे दाखिल करने की हिदायत दी है, जबकि दरखास्त दहिंदा को मजीद 2 हफ्ते का वक्त दिया है कि वह अपना जवाब दाखिल करे। इस मामले की अगली समाअत 28 जुलाई को होगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए। ये सभी लोग एक ही गांव के थे। इनमें 3 सगे भाई और एक शादीशुदा जोड़ा था। यह हादसा चुराह असेंबली हलके की पुखरी मसरूंद सड़क पर मानी जीरो के करीब पेश आया, जब एक बोलेरो गाड़ी काबू से बाहर हो गई और तकरीबन 500 मीटर दूर गहरी खाई में जा गिरी। चंबा के सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही है। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने अमृतसर में एक घर को कुर्क किया है, जिसका ताल्लुक लश्कर ए तैयबा के एक कारिंदे से है। यह शख्स सरहद पार मनुष्यात और दहशतगर्दी के नेटवर्क के एक केस में मुलविस है। यह नेटवर्क पाकिस्तान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, थाईलैंड, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर मुल्कों में फैला हुआ है। सरकारी जराये के मुताबिक ये कारिंदा अंकुश कपूर इस नेटवर्क का भारत में एक बुनियादी कारिंदा है। एनआईए की तफ्तीश से इंकशाफ हुआ है कि अंकुश के राबते दुबई में मुकीम एक मुलजिम से हैं, जिसका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम लश्कर ए तैयबा से है। अंकुश को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, जिसकी शिनाख्त एक साजिश तैयार करने वाले एक बहुत ही अहम कारिंदे के तौर पर की गई है, जिसका ताल्लुक नशीले मादों की स्मगलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और तकसीम से था। अमरीका और ईरान के दरमियान एक अहम मुफाहमतनामा लागू हो गया है, जिसके तहत लगभग 4 महीने से जारी लड़ाई फौरी तौर पर खत्म हो गई है। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान एक जामे अमन समझौते के खातिर 60 दिन तक गुफ्तगू जारी रहने की भी गुंजाइश रखी गई है। दोनों मुल्कों के दरमियान स्विट्जरलैंड में तयशुदा मीटिंग से पहले 14 निकाती समझौते पर इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत किए गए हैं। समझौते के तहत फौरी तौर पर लड़ाई बंद

कर दी जाएगी। दोनों मुल्क दुश्मनाना कार्रवाइयों से गुरेज करेंगे। इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर और ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तवील अरसे से जारी तनाजे को हल करने के लिए एक खाका तय करेंगे। मुफाहमत नामे के तहत अमरीका ईरान के गिर्द नवाह में बहरी नाकाबंदी खत्म करना शुरू कर देगा और आबनाए हुर्मुज के रास्ते बहरी जहाजों की आमद रफ्त को 30 दिन के अंदर अंदर मामूल पर लाने के लिए काम करेगा। न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के FIH हॉकी कप में पूल ए में भारत ने उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी कामयाबी हासिल की है और वो पूल ए में सर फहरिस्त आ गया है। शुरू में भारत पर एक गोल किया था, जिसके बाद दीपिका ने 2 और दीपिका सोरेंग ने उरुग्वे पर 1 गोल किया। फुटबॉल में कोलंबिया ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप के में एक मैच में उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर अपनी मुहिम का आगाज किया। ये मैच आज सुबह मेक्सिको शहर के इस्तादियो एस्तिका में खेला गया। इससे पहले ग्रुप एल में घाना ने पनामा पर 1-0 से जीत हासिल की थी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के सरकर्दा ताजिरों के साथ आला सतह की कई मीटिंग्स कर रहे हैं। वो वीवा टेक्स समिट में भी शिरकत करेंगे। मरकज माली साल 2026-27 में 26,000 किलोमीटर देही सड़कों की तामीर करेगा, जिस पर 18,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट में ऋतव्रत बनर्जी को असेंबली में अपोजिशन रहनुमा मुकर्रर करने के फैसले पर कोई अबूरी हुक्म देने से इनकार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक सड़क हादसे में एक ही गांव के 7 अफराद हलाक हो गए। और अमरीका और ईरान के दरमियान एक मुफाहमत नामे पर अमल दरामद शुरू हो गया है, जिसकी वजह से अमन मुजाकरात की उम्मीदें पैदा हुई हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगे। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के

0: स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ओआरएस, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
1: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की।

0: ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम भावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले दो दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू। शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में बात उस शख्सियत की जिनकी आवाज में अपनापन था, शरीर में ताकत और चेहरे पर सरलता। एक ऐसा नाम जिसने दुनिया में ऐसा नाम बनाया कि लोग उन्हें ताकत, सादगी और भारतीयता की मिसाल मानने लगे, साथ ही जिन्होंने कुश्ती में देश का नाम रोशन किया। हम बात कर रहे हैं दारा सिंह की, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई।

ऊपर वाला मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।

दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को अमृतसर के गांव धर्मूचक में बलवंत कौर और सूरज सिंह रंधावा के यहां हुआ था। कम आयु में ही उनका विवाह उनसे आयु में बड़ी लड़की से करा दिया गया। 17 वर्ष की उम्र में ही वो प्रद्युम्न रंधावा नामक बेटे के पिता भी बन गए। दारा सिंह का छोटा भाई सरदारा सिंह, जिसे सब रंधावा कहते थे, दोनों ने मिलकर पहलवानी शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव के दंगलों से निकलकर शहरों तक उन्होंने अनेकों कुश्तियां जीतकर अपने गांव का नाम किया।

1947 में दारा सिंह सिंगापुर आ गए। वहां रहते हुए उन्होंने भारतीय स्टाइल की कुश्ती में मलेशियाई चैंपियनशिप तरलोक सिंह को पराजित कर क्वालालंपुर में मलेशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जीती। इसके बाद उनका विजय रथ अन्य देशों की ओर चल पड़ा। 1952 में वो भारत लौट आए और 1954 में भारतीय कुश्ती चैंपियन बने। इसके बाद ओरिएंटल चैंपियन किंग कॉन्ग को भी परास्त किया। 1968 में अमेरिका के विश्व चैंपियन लव थेस को पराजित कर वे फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बन गए। उन्होंने 55 वर्ष तक पहलवानी की और 500 मुकाबलों में से किसी एक में भी पराजय का मुंह नहीं देखा। 1963 में उन्होंने अपने जीवन का अंतिम मुकाबला जीता और ज्ञानी जैल सिंह के हाथों अपराजय पहलवान का खिताब बरकरार रखते हुए कुश्ती से संन्यास ले लिया।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और हमारे आज के कलाकार हैं दारा सिंह। दोस्तों, दारा सिंह की पहचान सिर्फ ताकत नहीं, अनुशासन भी था। कहा जाता है कि वो नियमित व्यायाम और बेहद सादगी भरा जीवन जीते थे। कुश्ती की लोकप्रियता ने उन्हें फिल्मों तक पहुंचाया। शुरुआती दौर में वो एक्शन और स्टंट फिल्मों के बड़े सितारे बने। उनकी शुरुआत हुई फिल्म संग दिल से, बाद में लीड रोल वाली फिल्म किंग कॉन्ग आई। उनकी अधिकतर फिल्में मुमताज के साथ आई। करीब 16 फिल्में साथ करने के बाद ये हाईएस्ट पेड कपल था, जिन्हें करीब 4 लाख एक फिल्म का मिलता था।

पसंद कर रहे हैं। आप हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी। आप हैं सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत भारत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर से। और ये मैसेज हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का। आप हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोर, नारायण प्रसाद लहरे और दिनेश प्रसाद लहरे, साथ में है कालिंदी लहरे। वडेंखेड़ा पंजाब से टिंपू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। और अब बढ़ते हैं दारा सिंह जी के बारे में जानकारी के साथ। दारा सिंह ने 1980 के दशक में उनका रुख टेलीविजन की तरफ हुआ, जिसमें धारावाहिक रामायण में उन्होंने हनुमान का किरदार निभाया। इसके अलावा वीर भीमसेन और महाभारत फिल्म में भीम का किरदार निभाया। कई धार्मिक फिल्मों में उन्होंने भगवान शिव का किरदार भी निभाया। उनकी आखिरी फिल्म थी जब वी मेट। उनकी आखिरी पंजाबी फिल्म थी दिल मेरा पंजाबी और उन्होंने नेशनल अवार्ड विजेता फिल्म मैं माँ पंजाब दी में भी काम किया। एक्टिंग के साथ साथ दारा सिंह ने भक्ति में शक्ति और रुस्तम का निर्माण और निर्देशन दारा फिल्म्स के तले किया।

और अब बारी आपके मेल शामिल करने की। हमें बहुत सारे श्रोताओं के मेल मिल रहे हैं, तो उनमें से हमने कुछ मेल्स को लिया है। और ये मैसेज हमें मिला है अपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान अब्बासी और अरजान अब्बासी, उनके परिवार के सभी लोग। और ये कार्यक्रम को

फिल्मों कुश्ती के अलावा दारा सिंह ने 1998 में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल को ज्वाइन किया। राज्यसभा द्वारा मनोनीत दो वो पहले स्पोक्स पर्सन बने। 2003 से लेकर 2009 तक उन्होंने अपना कार्यकाल निभाया। दारा सिंह ने दो शादियां की जिनमें 3 बेटे और 3 बेटियां थी। उनका पुत्र बिंदु दारा सिंह भी फिल्मों में नजर आते हैं। दारा सिंह ने हिंदी ही नहीं बल्कि पंजाबी सिनेमा

में भी खूब काम किया और लंबे समय तक दर्शकों के प्रिय बने रहे। उनकी चर्चित फिल्मों में शामिल हैं किंग कॉन्ग, रुस्तम ए हिंद, शेरदिल, हरकुलस, मेरा नाम जोकर, आनंद, मर्द, कल हो ना हो जैसी फिल्में रहीं।

0: जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह।
1: बहुत लोग उन्हें अभिनेता के रूप में जानते हैं, लेकिन दारा सिंह सामाजिक जीवन में भी सक्रिय रहे। वे सार्वजनिक जीवन से जुड़े और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहे, इसलिए ही वो रुस्तम ए हिंद जैसे सम्मान के हकदार थे। 1912 से 1912 में 83 वर्ष की आयु में, माफ कीजिएगा, 2012 में 83 वर्ष की आयु में दारा सिंह दुनिया से चले गए। दारा सिंह सिर्फ अभिनेता नहीं, उस दौर की पहचान थे जब मेहनत, संघर्ष और व्यक्तित्व इंसान को महान बनाते थे। उन्होंने साबित किया कि अखाड़े की मिट्टी से निकला इंसान भी पर्दे पर अमर हो सकता है।

दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर से इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, आज के दौर में एक संदेश भेजने में जब बस कुछ ही सेकंड लगते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दिल की बातें कागज पर उतरती थी, लिफाफों में बंद होकर सफर करती थी और कई दिनों बाद अपने मंजिल तक पहुंचती थी। किसी प्रियजन के खत का इंतजार, डाकिये की घंटी की आहट और चिट्ठी पढ़ते समय चेहरे पर आने वाली मुस्कान, ये सब अपने आप में एक खूबसूरत एहसास था। आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे खत, चिट्ठियों और पैगामों की और सुनेंगे ऐसे गीत जो इस भावनाओं को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयां करते हैं। श्रोताओं, पहले प्रेम कहानियों का सबसे बड़ा साथी हुआ करता था एक खत। कई बार लोग रोज दरवाजे की ओर देखते रहते कि शायद आज कोई चिट्ठी आ जाए। उस एक कागज के टुकड़े में किसी की पूरी दुनिया समाई होती थी। आइए सुनते हैं एक ऐसे ही गीत जिसे प्रेम पत्र की मिठास आज भी महसूस की जाती है।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं मैटिनी मेलोडीज और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, अभी जो आप गीत सुन रहे थे वो गीत गाया था लता मंगेशकर ने और फिल्म का नाम था शक्ति। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे पैगाम की, चिट्ठियों की, संदेशों की। जब लोग एक दूसरे से दूर होते हैं ना, तब चिट्ठियां ही रिश्तों को जोड़े रखती हैं। कभी खुशी की खबर तो कभी यादों का जिक्र तो कभी मिलने का वादा, सब कुछ एक खत में समा जाता है। आइए अब सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो दूरियों में भी प्यार की गर्माहट बनाए रखता है।

अभी जो आप गीत सुन रहे थे, ये गीत लिया था आराधना फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। श्रोताओं, हर पैगाम कागज पर ही लिखा जाए ऐसा जरूरी नहीं। कभी आंखें संदेश देती हैं, कभी मुस्कान और कभी कोई गीत दिल की बात कह देता है। पुराने फिल्मों में कई बार गीत ही प्रेम का सबसे सुंदर पैगाम बन जाता था। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज में ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे चिट्ठियों की। कई रिश्तों की शुरुआत एक चिट्ठी से हुई, कई प्रेम कहानियां खतों के सहारे आगे बढ़ी। उस दौर में लिखावट भी पहचान होती थी, लोग लिफाफा देखकर ही समझ जाते थे कि ये चिट्ठी किसकी है। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो रिश्तों की उस गहराई को दर्शाता है।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे खतों की, लिफाफे की और पैगाम की। कुछ खत ऐसे होते हैं जो समय के साथ पुराने तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें कभी पुरानी नहीं होती। पुराने संदूक में रखी चिट्ठियां, किताबों में दबे हुए खत और उन पर लिखे शब्द आज भी बीते दिनों की खुशबू लिए हुए हैं। इसी भाव के साथ सुनते हैं आज का अंतिम गीत,

0: दोस्तों, खत सिर्फ कागज़ नहीं होते, ये भावनाओं का आईना होते हैं। उनमें इंतज़ार होता है, प्यार होता है, यादें होती हैं और कई बार पूरी ज़िंदगी की कहानी भी। उम्मीद है आज के गीतों ने आपको उन दिनों की याद दिलाई होगी जब चिट्ठियों का इंतज़ार भी एक खुशी हुआ करता था। तो इसी के साथ अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा गीत, गुनगुनाते रहिएगा संगीत, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ यानी आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ।
1: कभी यूं ही जब हुई

0: युज से निकला है, जिसका मतलब है जोड़ना या इत्तेहाद। योगा का मकसद इनफरादी शऊर को कायनाती शऊर से जोड़ना, यानी जिस्म, जहन और रूह में हम आहंगी पैदा करना। ये सिर्फ जिस्मानी वर्जिश नहीं बल्कि एक रूहानी फलसफा है जो जब्त नफ्स, मुराकबा और अखलाकी उसूलों पर मबनी है। और अगर हम फवायद पर बात करें तो योगा जिस्म को लचकदार और मजबूत बनाता है, दिल और फेफड़ों की सेहत बेहतर करता है, खून की गर्दिश और हाजमा को दुरुस्त भी करता है। दूसरी तरफ इसके जहनी और रूहानी फवायद भी हैं, जैसे योगा जहनी दबाव और बेचैनी को कम करता है, इर्तकाज और याददाश्त को बेहतर बनाता है, नींद को पुरसुकून और गहरी बनाता है। योगा जिस्म और जहन के अलावा रूह पर भी असर अंदाज होता है। उसके रूहानी फवायद को अगर देखें तो ये खुद शनासी और अंदरूनी सुकून अता करता है, मुराकबे के जरिए इंसान को हकीकत कायनात से करीब करता है, मोक्ष यानी याद की राह दिखाता है। तो सामईन कराम, आपको ये भी बताते चलें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने योगा को आलमी सतह पर मुतारफ कराने में तारीखी किरदार अदा किया है। 2014 में अक्वामे मुत्तहिदा में उनकी तजवीज पर 21 जून को बैन अल-अक्वामी योम योगा करार दिया गया, जिसे 177 ममालिक ने हिमायत दी। इसके बाद 2015 से हर साल दुनिया भर में करोड़ों अफराद योगा डे मनाते हैं और ये भारत की कदीम रिवायत को आलमी सेहत व सुकून की अलामत बना चुका है। पहला आलमी योगा के दिन 21 जून 2015 को दिल्ली के राजपथ पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में 35,985 अफराद ने योगा किया, जिसने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए। इसके अलावा न्यूयॉर्क, पेरिस, बीजिंग, काहिरा, कुआलालंपुर और दुनिया के दीगर शहरों में योगा डे मनाया गया। आपको ये भी बता दें कि योगा को आलमी सतह पर इसलिए कबूल किया गया कि यह जिस्मानी सेहत, जहनी सुकून और रूहानी बालीदगी का जाम जरिया है। योगा के कुछ अकसाम जो बहुत ज्यादा अवाम में मकबूल है, उनमें हठ योगा, जिस्मानी आसन और सांस की मशकें, राजा योगा, मुराकबा और जहनी इर्तकाज, कर्मा योगा, खिदमत और नेक आमाल, भक्ति योगा, अकीदत और मोहब्बत के जरिए कुर्ब इलाही, जनाती योगा, इल्म और फलसफे के जरिए हकीकत की तलाश। योगा हिंदुस्तान की कदीम रिवायत है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अकदामात के बाद ये दुनिया भर में एक आलमी तहरीक बन चुका है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा परवीन, जिनका ताल्लुक जामिया हमदर्द से है, जो दरसो तदरीस के साथ साथ इलाज मुआलजा के शोबे में योगा के जरिए कामयाबियां हासिल कर रही हैं। आइए इस सफर का हम आगाज करते हैं और उनसे जानते हैं कि योगा किस तरह हमारी सेहत को बेहतर बना सकता है या बना रहा है।
1: थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं, जैसा आपने बताया कि मैं हिफ्जान सेहत में हूँ जामिया हमदर्द में, और काफी साल से वहां मैं पढ़ा रही हूँ। मकसद हिफ्जान सेहत का, जैसे आप उसके नाम से जाहिर होता है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, यानी कम्युनिटी मेडिसिन। मतलब हम जो है वो इलाज के ऊपर इतना ज्यादा यकीन नहीं रखते हैं, बल्कि हम प्रिवेंशन के ऊपर काम करते हैं
0: जी।
1: और इसकी एक मिसाल मैं आपको खुद से दूंगी कि कहां से मैंने अपना योगा स्टार्ट किया। पहले तो मैं, जैसे आपने बताया अभी कि योगा कहां से, क्या मायने में, एक संस्कृत वर्ड है ये, 5000 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था
0: जी।
1: और फिर इसके माने यूज के माने यूनिटी के है, यूज के माने ज्वाइन करने के हैं, आप किस तरह से इसको जो है आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात है, जैसे वो आप पहले बता भी चुके हैं कि इसमें जो बात है वो है, आपको फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ आपको माइंड को भी उसके अंदर जो है वो लेना पड़ेगा, कि उसको अंदर जो है माइंड के साथ साथ अगर आप अपने ब्रेथ को भी ले लेंगे तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक परफेक्ट योगा जो है वो कहला सकता है। और उससे जो है वो काफी जो है वो फायदा किसी को भी जो है वो हासिल हो सकता है, चाहे माइंड की बात करें, चाहे फिजिकल एक्सरसाइज की बात करें, चाहे हम ब्रीदिंग की बात करें। तो इसमें काफी सारी चीजें आ जाती है, जैसे हम प्रॉपर एक्सरसाइज, जिसे हम आसन्स बोलते हैं, आसनास बोलते हैं, प्रॉपर ब्रीदिंग जिसे हम प्राणायाम बोलते हैं, या फिर हम प्रॉपर रिलैक्सेशन बोलते हैं जिसे हम शवासन बोलते हैं, या हमें उसके साथ साथ प्रॉपर डाइट भी हमें कौन सी लेनी है, क्या है, वो भी इसका जुज है। और सबसे बड़ी बात कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो है वो चीजें जो है लेनी है। आप ये बात मानेंगे कि नोबडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी परफेक्ट नहीं है आदमी इसमें। हमें क्या करना है, योगा हमें बताता है कि कैसे लेट गो, कैसे हम किसी चीज को, हम किसको कैसे थैंक यू बोल सकते हैं, कैसे चीजों को हम जो है वो माफ कर सकते हैं, कैसे हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके जरिए से हम ये जो है कर सकते हैं।

0: अगर हम कहें प्रॉपर आसनास की बात, तो मतलब प्रॉपर आसना, आसना हमें बताता है कि हम बॉडी को फिजिकली कैसे फ्लेक्सिबल जो है वो कर सकते हैं, आपकी कैसे हम अपने जॉइंट्स को लुब्रिकेट कर सकते हैं, कैसे हम अपने जॉइंट्स की जो है वो ऑयलिंग जो है वो कर सकते हैं, और कैसे अगर ऑयलिंग होगी हमारा लुब्रिकेट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा सर्कुलेशन भी बॉडी का होगा, हमारे जो ऑक्सीजन सारे हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज को, हमारे ब्रेन को वो अच्छी तरह से पहुंचेगी, और जाहिर है आप जो है वो फ्लेक्सिबल जो है वो किसी भी एज के अंदर जो है रह सकते हैं।
1: योगा की अगर हम बात करते हैं कि आपने ये सारी चीजें बताई हैं, लेकिन योगा करने के कुछ तरीके भी हैं, जैसे जाहिर सी बात है उसके फायदे भी हैं तो नुकसान भी हो सकते हैं, कि जिन चीजों को हम फायदा समझ के कर रहे हैं उसको अगर हम अलग वक्तों में करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि योगा जो है, योगा का वक्त क्या है और कौन सा योगा हमारे लिए, एक आम इंसान के लिए फायदेमंद है।
0: देखिए अगर मैं कहूं तो जैसे आपको पता है कि कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, हम किसी वॉक के लिए भी करते हैं या योगा के लिए भी करते हैं, तो मॉर्निंग का टाइम हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सही होता है। इंसान सो के उठता है, रिलैक्स्ड होता है, बॉडी भी रिलैक्स्ड होती है, तो वो जो है वो बेहतरीन टाइम होता है। खाना खाने के बाद हम योगा को बिल्कुल मना करते हैं, इसको नहीं करना चाहिए जबकि हमारा मैदा जो है वो पूरा भरा हुआ हो। तो कोई भी एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, आपको मॉर्निंग आवर्स में के अंदर जो करनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह से कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है, हो सकता है आपकी नाइट शिफ्ट हो ना कुछ, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हैं। योगा में नुकसान कोई नहीं है, कभी भी किसी टाइम भी करने में कोई भी नुकसान नहीं है। ये हमें अपने दिल से जो है वो निकालना होगा, कभी भी करेंगे आप उसको जो है वो फायदा ही होगा। आप अब ये डिपेंड करता है आपने कौन सी, कितनी रिग्रस एक्सरसाइज करी है, आपने अपनी एज के हिसाब से करी है, आपने मौसम के हिसाब से करी है, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है।
1: देखिए इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर आदमी अपने आप में परेशान है, और कमाल यह है कि आज के इस दौर में आदमी क्यों परेशान है उसको खुद पता नहीं है कि क्यों परेशान है। लेकिन योगा ने कुछ चीजें ऐसी बनाई हैं, कुछ आसन ऐसे हैं योगा के जो आपकी इन परेशानियों को दूर करता है। तो इन परेशानियों को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या कौन से ऐसे आसन को और कब करना चाहिए?
0: देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग का टाइम है, तो हम जो स्टार्ट करते हैं वो खुदा का नाम लेके करते हैं। अब कोई भी रिलीजन में, किसी में हो, कुछ हो, हम जो दो मिनट के लिए बैठते हैं और अपने उस खुदा को याद करते हैं जिसने हमें ये बनाया और हमें इतनी एबिलिटी दी कि हम ये कर सकते हैं सब है। उसके बाद जो है हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टार्ट करते हैं। हम एक सिंपल वॉक से स्टार्ट करते हैं, और हमें एक बात मैं बता दूं कि हमें ये नहीं कि हमें वॉक करने के लिए भाई मेरे घर के बाहर तो जगह नहीं है, मैं जा नहीं सकती है, गर्मी है कुछ है। नहीं, हमें सिर्फ एक थोड़ी सी जगह ही चाहिए, आपके डाइनिंग टेबल के पास हो सकती है, आपके बेडरूम में हो सकती है, आपके स्टडी रूम में हो सकती है, हमें बस एक थोड़ी जगह चाहिए। हमें वॉक करने के लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं चाहिए, हम एक जगह खड़े होकर भी 5 से 7 मिनट तक जो है वो वॉक कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी उसके आगे करने के लिए जो है वो यूज टू हो जाए कोई भी आसन करने के लिए।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम जैसे नौजवान हैं, बच्चे भी हैं, जो परेशान हैं, और मैंने वही कहा कि वो परेशान है, क्यों परेशान है उनको खुद भी पता नहीं है, तो इन चीजों से बचने के लिए कहा जाता है कि योगा कीजिए, तो कोई कौन सा ऐसा आसन है जिसको हम करें तो ये सारी चीजें हमारी दूर हो जाए?
0: देखिए स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए अगर मैं आपसे बात करूं, तो सबसे अच्छा प्राणायाम जिसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं वो सबसे बेस्ट होती है। इवन देखा गया है कि अगर बिल्कुल नींद भी नहीं आती है, अगर आप 10 मिनट भी ब्रीदिंग करके आप सो जाओ तो आपको बहुत अच्छी जो है वो नींद आ जाएगी। आप सिंपल कुछ नहीं कर सकते, हम लोम विलोम कर सकते हैं कि आप जो है एक नोस्टिल को आप बंद करेंगे और दूसरी नोस्टिल से आप जो है वो सांस लेंगे, और फिर जो है वो पहले जैसे अगर आपने लेफ्ट से लिया तो आप जो है वो राइट से उसको निकालेंगे, फिर इनहेल करेंगे राइट से और फिर लेफ्ट से निकालेंगे, ये आप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आपको बहुत सारा भस्त्रिका है, आपको बॉक्स ब्रीदिंग है कि आपको सांस लेना है और फिर उसको सांस को होल्ड करना है। आप जितनी देर तक भी होल्ड सकते हैं आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बाद आपने उसको एक्सहेल करना है और उसके बाद भी आपको उसको होल्ड करना है
1: जी।
0: फिर आप ये जो है वो कर सकते हैं, आप 10 मिनट जो है वो ये कर सकते हैं। फिर आप भस्त्रिका है जिसमें आपको जो है वो हम लोग मना करते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह होते हैं उनके लिए हम मना करते हैं कि आपको बहुत तेजी के सांस सांस लेना है और फिर छोड़ना है। जैसे मैं बता देती इस तरह से जो है वो करना है। तो जितने भी प्राणायाम है, जितनी भी एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इस सारी की सारी हमारी एंजाइटी को, हमारे मेंटल स्ट्रेस को कहीं ना कहीं जो है वो कम जो है वो करती हैं, उसको जो है रिड्यूस करती हैं।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने। अब एक चीज और है कि आज के दौर की अगर हम बात करें, वही फिर

0: जाता है कि भागती दौड़ती जिंदगी में जब हम भाग रहे हैं अपने हदफ के पीछे भागते जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि हमारा हदफ क्या है, उस हदफ के पीछे भागते जा रहे हैं, तो इसमें दो चीज़ें हमारे सामने आती है। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि नींद की कमी होती है, हम सो नहीं पाते हैं, और शायद नींद की कमी होने की वजह से हम जो है कब्ज़ के शिकार हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जिस्म से हमारी ताकत को भी ख़त्म कर देता है, हमारे चेहरे से भी नूर को ख़त्म कर देता है, हमारे चेहरे से भी रौनक ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए कुछ है क्या?
1: देखिए, ये तो इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि आज सेकंड जो है वो पेशेंट है वो मेरे पास वही आता है, वो यंगर जनरेशन जो 22-22 साल के हैं वो बताते हैं
0: जी।
1: प्रॉब्लम डिजिटल, आप सब सोएंगे आप देर से तो आप जागेंगे जो है वो देर से, ठीक है। अच्छा, मैंने जो देखा है 80%, मैं आपको बता रही हूँ मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो पेशेंट्स का, 80% 11 बजे के बाद जो है वो डिनर करते हैं। अच्छा ठीक है, जिनकी नाइट ड्यूटीज है, कुछ है, कोई वर्क प्रॉब्लम है तो अदरवाइज, लेकिन लोगों ने रूटीन बना रखा है कि वो देर से जो है वो खाना खाएंगे। देखिए, योग में भी है, सब में भी है, आपको अर्ली डिनर करना चाहिए, अर्ली डिनर। मैं खुद ही है, 6 से 7 बजे के बीच में मेरा अर्ली डिनर जो है वो हो जाता है, और डिनर जो है वो लाइट होना चाहिए। सोने में और खाने में रात के में कम से कम 4 घंटे का जो है फर्क रहना चाहिए। हम रात में बहुत हैवी मील ले लेते हैं, हम रात में जो है वो बहुत ज्यादा कोई जंक फूड वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अब आप देखिए, सिर्फ योग ही नहीं है, आप मैंने बताया योग के अंदर डाइट भी है। अब

0: डॉक्टरों ने और वैद्य ने और योगा के जो टीचर हैं सभी कहते हैं कि रात में आप कम खाना खाइए, तो वक्त कहाँ मिलेगा कि हम खाना खाएं? तो हम जैसे लोग कहाँ जाएं? रात में एक वक्त मिलता है हमें खाना खाने का, और वही एक वक्त में हम खाना खाते हैं। तो क्या ऐसी कोई चीज़ है या कोई ऐसा योगा या कोई ऐसा तरीका जिससे हम बता रही थी अपने बारे में मिसाल दे रही थी कि आप अपनी मिसाल खुद हैं, तो वाकई मैं आपको देख रहा हूँ आपके चेहरे पे जो ताजगी है जो नूर है वाकई देखने में लग रहा है कि आप चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है, अपनी सेहत को बरकरार रखा हुआ है। लेकिन हम लोग इसको कैसे करें, ये हम आम इंसान की या हम जैसे लोग जो ऑफिस में जाते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि बिजी बताते हैं, बहुत ज़्यादा काम करने वाले दिखाते हैं और इस चक्कर में हम कुछ नहीं कर पाते हैं।
1: देखिए, खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बताया है,
0: जी
1: ठीक है। आप ये मानेंगे कि योगा के ऊपर हम इतना इंफेसिस कर रहे हैं, ये क्या है? ये सिर्फ एक माइंड गेम है।
0: जी
1: आप अपने माइंड को जिस तरह डाइवर्ट करेंगे, आप उसी तरह से हो जाएगा। अगर आपको सोच बार बार ये सोच लगेंगे मुझे भूख लग रही है, जबकि आपका पेट भरा हुआ है, 10 मिनट के बाद आपको भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरी बॉडी का, आप जैसे आप अपनी बॉडी को कंट्रोल करेंगे, जैसे आप अपनी बॉडी को कहेंगे कि ये हो रहा है, बॉडी का वही वही ऑर्गन, वही वही टिश्यू उसी तरह से जो है वो काम करना शुरू होता है। देखिए, हमारे यहाँ जैसे कहते हैं कि नमाज पढ़ने से कहते हैं कि अगर 40 दिन तक पढ़ते रहो तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। 40 दिन का क्या मतलब है? मतलब यह है कि आप उसकी रोज करना स्टार्ट करो तो वो फिर हैबिट के अंदर आ जाता है। यही सारी चीज हर चीज में है, चाहे वो डाइट के अंदर हो, चाहे वो एक्सरसाइज के अंदर हो, चाहे वो योगा के अंदर हो, किसी चीज के अंदर भी हो। तो इसी तरह से अगर आपने अपने माइंड को करना शुरू कर दिया, मैं बताती हूँ कि मैं संडे तक में भी जो है वो योगा की जो है नहीं करती। लोग बाग कहते हैं कि नहीं आज संडे है, मैं वर्किंग हुई कुछ हूं, मगर वो मेरे एक माइंड के अंदर आ गया है और मुझे कभी अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है उठने के लिए। मुझे पता है कि ये मेरी योगा का टाइम है और मुझे उस टाइम पे योगा करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह, ना तो मुझे इस उम्र में, आई एम 64 ईयर्स, ना तो मुझे डायबिटीज है, ना ही मुझे हाइपरटेंशन है। तो खाली एक फिर वही मैं बता रही हूँ कि एक सारी चीजें मिलती हैं इसके अंदर। वहां आपकी पॉजिटिव थिंकिंग भी मिलती है, वहां आपका डाइट भी मिलता है, वहां आपका एक्सरसाइज भी मिलती है, और आप कितने एक्टिव रह रहे हो ये तो सब आपके ऊपर डिपेंड करके रहता है ना। कि दो लोग हैं अगर और दोनों को फीवर है 100 है, तो एक कहता है कि नहीं मुझे तो बहुत बीमार हूं, मैं तो सिर्फ आज लेटूंगा आराम करूंगा। दूसरा कहता है नहीं, मैं एक टेबलेट खा के और मैं काम पे चला जाऊंगा, मैं ठीक है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। चूंकि आप खुद खातून हैं तो हमारी ख्वातीन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, उनको क्या बताएंगी कि किस तरीके से वो अपने खानदारी में योगा को शामिल करें और किस तरह से अपने घरेलू जिंदगी में भी उन चीज़ों को शामिल करें जिससे वो सेहतयाब रह सकें?
1: बिल्कुल सही आपने बताया, क्योंकि फीमेल जो है वो दूसरों का ख्याल रखने में ज़्यादा रहती हैं, अपना जो है वो ख्याल वो कम रखती हैं। अच्छा, हमें एक एक पट मैं कहती हूँ कि ठीक है, हमें टाइम नहीं है, कहते हैं कि हमें बच्चों को स्कूल भेजना है, ये कुछ करना टाइम नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे मौके हैं कि जहाँ आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं अगर काफ एक्सरसाइज करना है, काफ जो आजकल जो है वो सेकेंड हार्ट जो है वो कहलाता है। अब आप किचन में खड़ी हुई, आप फॉर एग्जाम्पल दूध गर्म कर रही हैं, आप आराम से अपना काफ रेजेस कर सकती हैं, आप दूध भी कर सकती हैं और आप अपने जो है वो काफ को जो है वो रेस कर सकती हैं और उसमें आपका काफ रेजेस की एक्सरसाइज हो जाएगी। वहीं आप कुछ कर रही हैं,
0: ये एक्सरसाइज कैसे किया जाता है, ये अगर
1: यहाँ आप पंजों के बल पे आपको खड़ा होके और फिर नीचे करना होता है, फिर पंजों के बल खड़े हुए फिर हुए, तो इस तरह से जो आपके काफ मसल्स हैं, जो पिंडलियां जिसे हम पिंडली कहते हैं, वो रेज हो जाएंगी, तो वो उससे आपको एक स्ट्रेच मिलेगा। तो ये आप खाना बना रही हैं, दूध गर्म कर रही हैं, कुछ और काम कर रही हैं, वहां आराम से कर सकती हैं। कुछ शोल्डर एक्सरसाइज हैं, आप खड़े होके किचन में जो है वो शोल्डर एक्सरसाइज जो है वो कर सकती हैं। बहुत सी खातिन
0: कैसे कर सकते हैं
1: वो, कुछ नहीं, आप खड़े हुए हैं, आपको कंधों को खाली ऊपर नीचे करना है। आप हाथ के बहुत सारी एक्सरसाइज है जो आप हाथ शोल्डर एक्सरसाइज जो है वो कर सकती हैं, खाली कंधों को ऊपर नीचे नहीं करना है। आप नेक को भी जो है वो एक्सरसाइज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इतना ज्यादा कॉमन हो गया है, आपको खाली क्या करना है, नेक को ऊपर नीचे करना है, आपको दाएं बाएं करना है, आपको क्लॉकवाइज करना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। और एक मैं आपको एक्सरसाइज बता देती हूं कि खासतौर से थायराइड आजकल बहुत कॉमन जो है वो हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको फेस अपना ऊपर करना है और नीचे वाले जबड़े को चलाना है 15 से 20 बार ऐसे करके, ताकि आपका नीचे वाला जबड़ा पूरा हिले। तो ये एक थायराइड के लिए एक बहुत ही अच्छी जो है एक्सरसाइज है। तो ये मैंने बताया जो माइंड गेम है, हमें अपने माइंड को डाइवर्ट करना है कि हम इसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल जी हाँ, जैसा कि आपने अभी बताया कि जो खातून हैं जो घर में रहती हैं, खाना बनाती हैं, वो किचन में भी वो खड़े होकर अपने कंधों की एक्सरसाइज कर सकती हैं, अपने गर्दन की एक्सरसाइज कर सकती हैं, अपने जबड़े की एक्सरसाइज कर सकती हैं, अपने पिंडली और मसल्स की एक्सरसाइज कर

0: सकती हैं, और आपने सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से बताया। इसके अलावा हमारे उन लोगों के लिए जो रेडियो सुन रहे हैं, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो हमें नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए हम अगर कुछ बताना चाहें तो कौन से ऐसे एक्सरसाइज हैं या कौन से ऐसे आसन हैं जिसको वो कर सकते हैं, करने के बाद जो है अपनी सेहत को बेहतर तरीके से रख सकते हैं?
1: देखिए, सबसे कॉमन तो आजकल जो है वो डायबिटीज, जिसे हम डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, तो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो हो रहा है। हमारे योग में बहुत सारे ऐसे आसन से जिनका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो पेंक्रियास के ऊपर होता है, इंसुलिन सेंसिटिव होते हैं, तो उसे हम कहते हैं अर्धनारीसेन आसन, कि आपको जो है एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर जो है बैठने के बाद जो है वो क्रॉस करना होगा, ठीक है, और क्रॉस करने के बाद जिस तरफ आपका घुटना है आपको उसी तरफ अपना मुंह करना होगा। तो उससे क्या होता है कि उस आपका जो घुटने का इफेक्ट है वो आपके पेंक्रियास के ऊपर आता है, फिर यही आपको एक बार राइट साइड से करना होता है, एक बार जो है वो लेफ्ट साइड से जो है वो करना होता है। तो ये एक बेहतरीन आसन है, अर्धनारीसेन आसन, जो हम डायबिटीज के लोगों को जो है वो जो है खास तौर से बताते हैं।
0: तो डायबिटीज और ज़ायबितीस की बात कर रहे हैं, तो ये मामला तो ऐसा है कि ये बीमारी, अब पहले ये कहा जाता था कि ये अमीरों की बीमारी हुआ करती थी, यानी जो लोग बहुत आराम पसंद होते थे, आराम तलब होते थे, अमीर से मुराद ये मामला था कि आराम पसंद है, आराम तलब है। लेकिन ये बीमारी देखने में आया कि अब छोटे बच्चों को भी हो रही है और सभी को, ये कोई किसी खास तबके की नहीं रह करके सभी में हो गई, तो इसकी वजह क्या है डॉक्टर?
1: इसकी वजह तो अभी मैंने आपको बताई थी, लाइफस्टाइल आपका किस तरह से। अब देखिए, जेनेटिक आ रही है तो उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो आएगी, लेकिन आज की दुनिया में हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो गया है वो सारी बीमारियां उसी की देन है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो दिल की कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो, सारा हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर ही सारा जो है वो डिपेंड होकर रह गया है, कि हम जो है देर से सो रहे हैं, देर से हम उठ रहे हैं, खाना हम देर से खा रहे हैं, हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अगर हम टीवी के सामने बैठे हैं तो हम पूरा जंक जो है वो खाए जा रहे हैं, तो इससे तो संभलना होगा। या हम डिजिटल पे अपने मोबाइल पे जो है वो जो है दो दो तीन तीन घंटे हैं, और मैं बताऊँ योग में बहुत सारी ऐसी आंखों की भी इतनी अच्छी एक्सरसाइज है, छोटी छोटी एक्सरसाइज है, मैं आपको बता देती हूँ, कभी भूल जाऊंगी, कि कुछ नहीं है, आपको अपनी पलकों को जल्दी जल्दी जल्दी जो झपकना है, बहुत जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जो है झपकना है, तो उससे आपकी आंखों पे थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे भारी हो रही है, लेकिन इससे आंखों का सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, उसकी रोशनी के ऊपर भी असर होता है। फिर आपको आंखों से एक बार राइट देखना है, एक बार लेफ्ट देखना है, राइट देखना है, लेफ्ट देखना है, राइट आहिस्ता आहिस्ता, लेफ्ट राइट, इस तरह से जो है वो देखना है। फिर अपनी आईज को आपने रोटेट करिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप कुर्सी पे बैठ के भी, अगर आप ऑफिस में है, आपका लंच टाइम है, आप 10 मिनट में उसमें बैठ के भी जो है वो एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। या आप अपनी आंखों के सामने आप अपनी एक फिंगर रखेंगे और उस फिंगर को आप जो है वो दूर लेके जाएंगे, उसको बराबर उसको फिंगर को देखेंगे और उसको जो है वो पास लेके जाएंगे, मतलब उसके फिंगर के ऊपर आपका बराबर कंसंट्रेशन रहेगा, तो ये आपकी आंखों के लिए बहुत ही बेहतरीन एक जो है वो एक्सरसाइज है। इस तरह से जो है बैठ के आप कहीं भी जो है वो कर सकते हैं।
0: तो ये आंख के साथ साथ दिमाग के लिए भी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका इसमें कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब है आपका दिमाग जो है वो एक्टिव हो रहा है उस चीज को कैच करने के लिए।
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो दो तीन चीज़ें आपने बहुत अच्छी बताई जो मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है और हमारे सामईन के लिए भी है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि योगा तो हो गया, एक्सरसाइज हो गई, उसके अलावा जो है हम आपके पास जाते हैं जब कोई बीमार होता है, यानी हम बीमार होते हैं तो हम आपके पास जाते हैं, आप हमें दवा जो है सजेस्ट कर देती हैं, दवा बताती हैं, हम उस दवा को खा लेते हैं। लेकिन जैसा कि आपने शुरू में ही कहा था कि बचाव बेहतर है, दवा से बचाव बेहतर है, तो बचाव के लिए हम ऐसा क्या करें कि हमें डॉक्टर्स की जरूरत ना पड़े? हालांकि डॉक्टर से ये सवाल करना बड़ा अजीब सा मुझे लग रहा है, लेकिन ये बताइए कि हमें डॉक्टर की जरूरत ना पड़े, ऐसा क्या हम करें? ऐसा या तो हम खाने पीने में ऐसी कौन सी चीजें लेकर आए, अपने खाने पीने को कैसे हम बेहतर बनाएं, या फिर योगा में हम कैसे योगा को हम अपनी जिंदगी में शामिल कर लें जो हमारे ऊपर भी बहुत वजन भी ना लगे, यानी गिरा भी ना गुजरे, और हम आसानी के साथ उसको करते चले जाएं, खाने पीने में भी उस बदलाव को हम शामिल कर लें जिसकी वजह से हमें डॉक्टर के पास न जाना पड़े इलाज के लिए।
1: देखिए, जामिया हमदर्द ने मजीदिया यूनानी हॉस्पिटल है जी, उसके अंदर मैं 2 दिन जो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की ओपीडीज करती हूँ
0: जी।
1: मतलब ये है कि मुझे दवाइयों पर बिल्कुल नहीं देना चाहती मैं, उसको कहीं ना कहीं इन्हीं की तरफ लाना चाहती हूँ। सबसे पहले बैठ के मैं हिस्ट्री पूछती हूँ कि आप क्या काम करते हो, आपका कितने बजे सोते हो, आप कितने बजे उठते हो, आप क्या खाना खाते हो, कितने बजे आप खाना खाते हो, कोई एक्सरसाइज किस तरह से करती, कितना आपको मेंटल स्ट्रेस है, उसी के हिसाब से मैं उसको जो है वो ट्रीट करती हूँ। देखिए, 2-3 बातें हैं जो

0: अगर हम यही इंक्लूड कर लेंगे अपनी लाइफ में तो ये मतलब 99% लोग पानी नहीं पीते हैं, इतना पानी एडिक्वेट पानी नहीं पीते हैं जिनको जितनी की उनकी बॉडी को जरूरत होती है हाइड्रेट करने की
1: जी।
0: उसके बाद उनको गैस्ट्राइटिस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की तो एक खास वो है बीमारी हो रही है। तो ये है कि जितना आप ज्यादा पानी पियेंगे उसमें आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट होगी, ये अवॉइड करते हैं। अब वो अलग वजह है, कुछ लोग वर्किंग प्लेस पे हैं इसलिए वो करते हैं वो, लेकिन आपको बताना है कि आपको पानी जो है वो ज्यादा जो है वो पीना है। आपको बताना है कि घी तेल का कम इस्तेमाल जो है वो करना है, ज्यादा घी तेल के जैसे आपको हमारे यहाँ की जो है वो डिशेज जो है वो काफी उसमें वो होता है, तो आपको घी तेल का जो है वो बहुत से कम का कम जो है वो इस्तेमाल करना है। मैदा का इस्तेमाल आप अपनी जो है वो डाइट में बिल्कुल ना करें, बेकरी प्रोडक्ट का कोई भी इस्तेमाल जो है वो अपनी उसमें ना करें। आपको सिर्फ एक सिंपल डाइट जो है रखनी है, मिलेट्स आपको जो है वो अपनी डाइट के अंदर रखने हैं, जवार बाजरा आजकल जो हो रहा है वो आपको अपनी डाइट उसमें रोटी भी खा सकते हैं, आप उसका दलिया भी जो खा सकते हैं, जौ का दलिया बहुत ज्यादा जो है वो मुफीद होता है, बहुत हल्का होता है, ये करना है। और कभी कभी हम क्या कहते हैं कि हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लो, आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा करके ले लो, ये नहीं कि फिर क्या होता है कि हम एकदम से भूख लगती है और हम ज्यादा खा लेते हैं, या शाम में हम एकदम से भूख लगती है ज्यादा खा लेते हैं। अगर हम छोटी छोटी स्मॉल फ्रीक्वेंट और वो भी जो है वो जंक नहीं खा के, जैसे हमने अब थोड़ा सा हमने चना काला चना है वो हमने उबाल के खा लिया, या हमने कुछ स्प्राउट्स जो है वो खा लिए, या हमने कुछ ऐसा हेल्दी जो है वेजिटेबल सूप पी लिया, तो अगर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे दो दो घंटे के बाद, तो हमें वो जो हमें अर्ज जो होती है डिनर के टाइम पे या उसको हम किसी तरह से जो कम जो है वो कर सकते हैं। नट्स का बहुत ज्यादा रोल है, अगर आप कोई बात नहीं वॉलनट वगैरह जिसे हम अखरोट कहते हैं ये आप दो तीन भी आप खाएं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को भी बहुत ज्यादा जो है उसके लिए जो फायदेमंद जो है वो हो सकता है। और रात में यह है कि हल्की गजाएं बहुत सारे जो है वो अब आपको देखना चाहिए इसमें प्रॉपर प्रोटीन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये जा रहा है, ये ना चाहो कि उसमें एक्सेसिव कोई शुगर हो। तो एक और सर्टेन एज के बाद 40 साल के बाद आपको एक शुगर और सॉल्ट का इंटेक तो आपको अपनी लाइफ में कम ही करना होगा आगे एक जिंदगी जो है वो अच्छी जीने के लिए। तो आपको ये देखना होगा कि आपका सोर्स क्या है, उसके साथ साथ खाने के साथ साथ फिर वही पॉजिटिव थिंकिंग, और अगर आप खाना खा रहे हो और बहुत ज्यादा गुस्से में खाना खा रहे हो तो इसका इफेक्ट बॉडी के अंदर अलग होगा, और अगर आप खाना खा रहे हो एक पॉजिटिव रिलैक्स होकर खा रहे हो तो उस खाने का असर आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट जो है होगा
1: जी। डॉक्टर आशा साहिबा आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, अब आखिर में हमारे लिसनर को कोई पैगाम देना चाहेंगी?
0: देखिए मैं ये कहना चाहूंगी खासतौर से क्योंकि एज ए फीमेल मैं खुद फीमेल हूँ और मैंने जो है वो योगा जो है करते हुए मुझे 17-18 साल हो गए बराबर, और मैं यही कहूंगी औरतों के लिए कि आपको अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है। आप ये मत सोचिए कि हमें टाइम नहीं मिलता, 24 घंटे होते हैं बहुत ज्यादा टाइम होता है आपको, फिर जो है आपको जब ख्याल आएगा जब वो टाइम निकल चुका होगा। तो अपनी लाइफ के लिए कम से कम 10 मिनट आप निकाल सकती हैं, वो कहीं भी निकाल सकती हैं, वो किचन में भी निकाल सकती हैं, वो वॉशरूम में भी निकाल सकती हैं, वो अपने ड्राइंग रूम में भी निकाल सकती हैं, आपको बहुत ज्यादा तामझाम करने की कहीं भी कोई जरूरत नहीं है। आपसे 10-15 मिनट जो है वो अब बहुत सारे जो है ऑनलाइन जो है इतना आ गया है कि आप देख के जो है वो आपको नहीं आता, ऑनलाइन खोलिए योगा की इतनी क्लासेस है वो आप कर सकते हैं। तो इस सब चीजों पे आप खुद अपना जो है वो ध्यान रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप सही रहेंगी तो आप अपने पूरे परिवार को सही रख सकती हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा परवीन साहिबा, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने योगा के तिब्बी फायदे पर रोशनी डाली। सामईन इकराम, योगा सिर्फ वर्जिश नहीं बल्कि एक तर्ज जिंदगी है, ये हमें जिस्मानी सेहत, जहनी सुकून और रूहानी बालीदगी अता करता है। आइए आज से हम योगा को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और अपने वजूद को हम आहंगी और सुकून की तरफ ले जाएं। चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था इंतजार सैफी ने। तो सामईन इकराम, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और प्रोग्रामों के साथ, कुछ और मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान शाहनवाज हाशमी को प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 4 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी में उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में।

स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पुर्तगाल ने शुरुआत से ही दबदबा बनाया और छठे मिनट में जोआसो नेवेस के गोल की बदौलत बढ़त हासिल कर ली। पेड्रो नेटो के शानदार क्रॉस पर नेवेस ने बेहतरीन हेडर लगाकर गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया और टीम को 1-0 से आगे कर दिया। हालांकि शुरुआती झटके के बाद कांगो डीआर ने शानदार वापसी की। अफ्रीकी टीम ने लगातार आक्रमण की और पहले हाफ के अतिरिक्त समय में बराबरी का गोल दाग दिया। ऑर्थर मासुआकू के सटीक क्रॉस पर

0: उधर विश्व कप में अपनी पहली जीत की तलाश में जुटी सह मेजबान कनाडा और एशियाई दिग्गज कतर की टीमें ग्रुप बी के मुकाबले में आमने सामने होंगी। ये मैच वैंकूवर के बीसी प्लेस स्टेडियम में खेला जाएगा। विश्व कप 2026 के अपने पहले मैच में दोनों टीमों ने एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 1-1 से ड्रॉ खेला। कनाडा ने बोस्निया हर्जेगोविना के खिलाफ एक अंक हासिल किया, जबकि 2022 के मेजबान कतर ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ भी यही नतीजा दिया। पहले मैच के बाद ग्रुप की सभी चार टीमें बराबरी पर हैं। विश्व कप में पहली बार कनाडा से बड़ी उम्मीदें हैं और टोरंटो में खेले गए उनके पहले मैच में यह दबाव टीम पर साफ दिखाई दिया। उधर कतर ने अपने पहले मैच में कड़ा संघर्ष किया और स्टॉपेज टाइम के चौथे मिनट में बराबरी का गोल दाग कर एक अंक हासिल किया। विश्व कप ग्रुप स्टेज के मैचों में उनका एकमात्र गोल तीसरा सबसे देर से किया गया। इस मैच से पहले कतर लगातार 7 मैचों में जीत हासिल नहीं कर पाया है और इन सभी मैचों में उन्होंने 1 या उससे कम गोल किए हैं। आज मौजूदा 2 बार के एशियाई चैंपियन 2023 के गोल्ड कप के ग्रुप स्टेज में मैक्सिको को 1-0 से हराने के बाद कॉन्काकैफ टीम के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज कर सकते हैं। मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आज एस्टाडियो एक्रोन में होने वाले मुकाबले में लगातार दूसरी जीत के साथ अपने अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत करने का लक्ष्य रखे हुए हैं। ग्रुप ए में अपना पहला मैच जीतने के बाद मैक्सिको और दक्षिण कोरिया दोनों जानते हैं कि एक और जीत उन्हें एक मैच शेष रहते हुए राउंड ऑफ 32 में जगह दिला देगी और संभवतः पहला स्थान भी सुनिश्चित कर देगी। सह मेजबान टीम मैक्सिको ने टूर्नामेंट के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका पर शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन उन्हें उस कमजोर टीम से कोई खास प्रतिरोध नहीं मिला। लेकिन आज एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण कोरिया, जिसने पिछली बार चेकिया के खिलाफ वापसी करते हुए जीत हासिल की थी और अपने साहसिक और आक्रामक फुटबॉल से सबका ध्यान खींचा था, अपनी मजबूत शुरुआती फॉर्म को जारी रखने की कोशिश करेगा। मैच शुरू होने से पहले कागजों पर दोनों टीमों के बीच फीफा रैंकिंग में सिर्फ 11 स्थानों का अंतर है और आज एक तनावपूर्ण लेकिन रोमांचक मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है। हम आपको बता दें कि ग्रुप ए में आज कमजोर टीम मानी जा रही साउथ अफ्रीका का मुकाबला चेकिया से होगा। ये मैच भी काफी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि दोनों टीमें रैंकिंग में काफी नीचे हैं और अभी तक बहुत बढ़िया फुटबॉल का प्रदर्शन इस विश्व कप में नहीं किया है। फुटबॉल के बाद अब चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट पर। वहां पर भी काफी दिलचस्प मुकाबले चल रहे हैं। भारत की तगड़ी चुनौती है, बता रहे हैं हमारे साथी शिवांश रक्षित।
1: मकाओ ओपन 2026 में आज खेले गए मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी थरुन मन्नेपल्ली को चाइना के डोंग के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। मेन सिंगल्स में थरुन मन्नेपल्ली को दोनों ही गेम में हार का सामना करना पड़ा। मिक्स डबल्स में ईशान भटनागर और श्रुति मिश्रा को चीन की ली होंग और हुआंग के जिन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। तीनों ही गेम्स में पहला गेम तो भारत के नाम हुआ, लेकिन अगले ही दो गेम चीन के नाम हुआ। राउंड ऑफ 16 में विमेन सिंगल्स में रक्षिता श्री संतोष रामराज को किम मिन सून के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। दोनों ही गेम्स साउथ कोरिया द्वारा जीता गया। मेन सिंगल्स में रौनक चौहान को चीन के हु जे एन द्वारा भी हार का सामना करना पड़ा। दोनों ही गेम्स चाइना द्वारा जीते गए। विमेन सिंगल्स में श्रीयांशी वली शेट्टी को किम मिन जी, जो कि साउथ कोरिया की प्लेयर है, उन्होंने भारतीय खिलाड़ी को दोनों ही गेम में हरा दिया। विमेन सिंगल्स में राउंड ऑफ 16 में अश्मिता चलिहा ने यूएसए की इशिका जायसवाल को दोनों ही गेम्स में हरा दिया।
0: जी हाँ, बैडमिंटन से एक और खबर आ रही है, हालांकि वो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ईशा रानी बरुआ पराजित हो गई हैं। जो दक्षिण कोरियाई उनकी प्रतिद्वंदी थी पार्क गायुन, उनके खिलाफ एक संघर्ष तो उन्होंने किया, लेकिन शिकस्त झेलनी पड़ी है। पहला गेम जो रहा वो दक्षिण कोरियाई की खिलाड़ी के नाम पर 21-19 से रहा। दूसरे गेम में भी काफी कड़ा संघर्ष किया भारतीय खिलाड़ी ने, ईशा रानी ने, लेकिन आखिरकार उन्हें 23-21 से शिकस्त झेलनी पड़ी। तो ये खबर अभी अभी आई है और हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। वहां पर आपको पता है कि महिला वर्ल्ड कप के मुकाबले चल रहे हैं। कल भारत ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया, लगातार अपनी दूसरी जीत हासिल की है। क्या कुछ खास हो रहा है महिला वर्ल्ड कप में, सुनते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 10वें मैच में कल रात भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। इस तरह भारत ने पहली बार महिला टी20 विश्व कप में रन के हिसाब से सबसे बड़ी जीत दर्ज की। नीदरलैंड्स ने टॉस

0: कर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप में अपना पहला अर्धशतक जड़ा। स्मृति मानधना ने लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया। दोनों ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। नीदरलैंड्स की टीम 210 रनों के लक्ष्य के जवाब में 114 रन पर ऑल आउट हो गई। इस मैच के बारे में क्या कहती हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर?
1: We were really good with the bat. It wasn't that easy wicket, but I think the way Smriti and Shefali batted, they gave us a very good platform. So I think credit goes to them the way they both batted.
0: गेंदबाजी में श्री चरणी ने 4 विकेट लिए। शेफाली वर्मा ने गेंद से भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट लिए। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर वैशाली माथुर ने उनकी गेंदबाजी की तारीफ की।
2: शेफाली वर्मा सिर्फ यही नहीं, वो कहीं भी देखेंगे कि इंडियन टीम के इंडिया ए टीम में भी वो बॉलिंग करती है एंड वहां पर भी वो इसी तरह का एक अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है और वहीं से वो कॉन्फिडेंस यहाँ इंडियन टीम में उनके लिए बिल्ड होके आया है। उनको रीड करना इतना ईजी नहीं था क्योंकि वो सिर्फ एक ही वेरिएशन में बॉल नहीं डालती, वो 2 वेरिएशन में बॉल डालती, एक वो ऑफ स्पिन डालती है, एक वो टॉप स्पिन भी डालती है। तो उसमें डिफरेंस है दोनों में। टॉप स्पिन में थोड़ा सा बैटर को डिफिकल्टी होती है जज करने में एज कम्पेयर टू ऑफ स्पिन। सो उसमें जब उनको बॉल विकेट मिली थी तो वो उन्होंने टॉप स्पिन करके बॉल डाली थी एंड वो हल्का सा हम कह सकते हैं कि स्लाइटली उनको एक टर्न मिला था उस टाइम।
0: हम आपको बता दें कि भारतीय टीम लगातार दूसरा मैच जीतकर अपने ग्रुप में अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। उधर एनरी डर्कसेन के अर्धशतक के दम पर साउथ अफ्रीका ने कल बर्मिंगम के एजबेस्टन में पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही अफ्रीकी टीम ने आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी पहली जीत दर्ज की, जबकि पाकिस्तान की ये दूसरी हार है। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने उसे 64 रन से हराया था। पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 126 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए थे। साउथ अफ्रीका ने 8 विकेट खोकर 19 गेंद शेष रहते 126 रन का टारगेट हासिल कर लिया। महिला टी20 विश्व कप में कल खेले गए एक और मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सामने बांग्लादेश ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। बांग्लादेश की टीम को 63 गेंद पहले ही 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने कप्तान सोफी के फैसले को सही साबित किया और बांग्लादेश को 20 ओवर में 8 विकेट पर 77 रन पर रोक दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 9.3 ओवर में ही जीत हासिल कर ली। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया की दूसरे मैच में यह दूसरी जीत है, जबकि बांग्लादेश की पहली हार। उधर वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड दोनों टीमें एक जैसे रिकॉर्ड के साथ लीड्स पहुंची हैं, लेकिन उनकी

0: कुमार चौहान की और इनके परिवार के सभी सदस्यों की बाबा कुटीर रायगढ़ से ये फरमाइश हमें भेजी है। ये फरमाइश हमारे पास आई है गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से, और भेजने वाले भाई हैं रमेश कुमार कंबोज और इनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से भी हमें फरमाइश भेजी है, और भेजने वाले भाई हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर देवेंद्र सिंह की आवाज में ये रागनी।

0: शांति का धन सफल कमाई सबर करे सुख हो से। बहुत ही बढ़िया जो है ये रागनी हमने सुनवाई अपने सभी बहन भाइयों को देवेंद्र सिंह की आवाज में। और अतुल भाई देखिए एक बात बहुत ही अच्छी हमारे जो है ना बुजुर्ग कह गए हैं पुराने के कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी और चौथा सुख कुलवंती नारी। तो इसमें सबसे पहला सुख जो है ना वो है निरोगी काया का। और निरोगी काया तब होगी जब आप कहीं ना कहीं भाई अपने आप को साध लेंगे, अपने शरीर को साध लेंगे और योग का सहारा कहीं ना कहीं लेंगे।
1: बिल्कुल, देखिए 21 जून को योग दिवस भी आ रहा है और निश्चित रूप से अगर हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सुबह को थोड़ा सा शरीर को समय देते हैं, अपने को वर्जिश करते हैं और तुम्हारा योग करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हमारे शरीर के जो है थोड़े थोड़े रोग खत्म हो जाते हैं
0: और उससे बहुत ही स्फूर्ति शरीर के अंदर, तन और मन दोनों की शांति और स्फूर्ति शक्ति बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं योग का सहारा हमें सबको लेना चाहिए और सहारा क्या लेना चाहिए, योग निश्चित तौर पर करना चाहिए। तो देखिए बातें अपने बहन भाइयों से हम आगे भी करेंगे और हमारे जो आज के दूसरे कलाकार हैं वो हैं यशपाल और इनके लिए भी हमारे पास देखिए बहुत सारे SMS आ रहे हैं। ये जो SMS आया है ये आया है भोपालगढ़ राजस्थान से, भेजने वाले भाई हैं धर्मेंद्र छिपा और इनके परिवार के सभी सदस्य। जलालाबाद वेस्ट से ये हमें SMS भेजा है सुरेश गगनेजा और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। दादा बाबू रोड झारखंड से ये SMS आया है मोहम्मद यासीन अनजान और इनके परिवार के सभी सदस्यों का।
1: ये SMS हमारे पास में आया है जसपुर उत्तराखंड से, भेजने वाले हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी और इनका पूरा परिवार। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से फरमाई भेज रहे हैं रजाक मोहम्मद और इनका पूरा परिवार। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से फरमाई भेज रहे हैं हीरा मणि वर्मा और इनका पूरा परिवार। और कलानौर हरियाणा से फरमाई भेज रहे हैं नरेंद्र शर्मा और इनका पूरा परिवार। और पायल बहन ये SMS हमारे पास में आया है गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से, भेजने वाले हैं राजेंद्र कुमार मलकित कौर इनका पूरा परिवार। संबलपुर कांकेर से फरमाई भेज रहे हैं फागुराम यादव और इनका पूरा परिवार। गांधीनगर गुजरात से फरमाई भेज रहे हैं सुरेश राठौड़ और इनका पूरा परिवार। पलारी छत्तीसगढ़ से भी हमारे पास में SMS आया है, भेजने वाले नितेश कुमार देवांगन और इनका पूरा परिवार।
0: शहर भागा पुराना पंजाब से ये हमें SMS भेजा है सरदार परमजीत सिंह और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये SMS हमारे पास आया है कनेरा मोहल्ला पटियाला से, भेजने वाले भाई हैं मुकेश बत्ता और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमारे पास आई है ये करावल नगर दिल्ली से, भेजने वाले भाई हैं रामनाथ प्रजापति श्रीमती सुमन देवी और ये फरमाइश हांडीखेड़ा से हमें भेजी है राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा ने। ये फरमाइश हमारे पास आई है लौडाड़ा जिला बागपत से, भेजने वाले भाई हैं जगमोहन सिंह प्रजापत और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमारे पास आई है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से, भेजने वाले भाई हैं सुरेश ग्रोवर और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: ये फरमाइश हमारे पास में जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले मुकेश कश्यप और उनका पूरा परिवार। जटवाड़ा गाजीबाद से भी फरमाई भेज रहे हैं शीशपाल अकेला और इनका पूरा परिवार। गांव फरासी जिला हिसार से फरमाइश भेज रहे राजकुमार डुड्डी और इनका पूरा परिवार। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर यशपाल की आवाज में ये रागनी।
2: बोला

0: तो पायल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे यशपाल की आवाज में ये रागनी, और इसी रागनी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम राम, राम।
0: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां पारंपरिक तरीके सीमित साबित होते हैं वहां नवाचार प्रभावी समाधान प्रदान कर सकता है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत में डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्रों में तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्धियों के माध्यम से मानव क्षमता की नई सीमाओं का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। श्री मोदी ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
2: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
3: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। सरकार ने कहा कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मीनाक्षी हुडा विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर चुकी हैं। मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: अभी आप सुन रहे थे हिंदी समाचार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
1: राम राम।
0: तो पायल बहन, हम फिर से हाजिर हो गए हैं कृषि जगत कार्यक्रम लेकर के। और भाई, कृषि जगत कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने सभी किसान बहन भाइयों के लिए नई नई जानकारियां लेकर के आते हैं, और आज भी ऐसी ही जानकारी लेकर के आए हैं वर्तमान सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम।
1: बिल्कुल, और इसमें जो है अपने सभी बहन भाइयों को हम ये वार्ता सुनवाएंगे महिला सशक्तिकरण और FPO के संघ जो है ये
0: क्षेत्र में जो है विकास।

0: विकास के लिए
1: किस प्रकार से विकास किया है सरकार ने, और इसकी जानकारी दे रहे हैं बृहस्पति कुमार पांडे। तो पायल बहन लेते हैं ये थोड़ी सी जानकारी।
2: आज का जो चर्चा का विषय है वह है महिलाओं का सशक्तिकरण और एफपीओ। बीते 12 सालों में क्या बदलाव आए हैं महिलाओं की स्थिति में और किसानों की स्थिति में क्या बदलाव आएंगे। सबसे पहले महिलाओं की स्थिति अगर देखी जाए तो ग्रामीण महिलाओं को आमतौर पर घर के काम काज करने वाली और चूल्हा चौका तक ही सीमित देखा जाता रहा है, लेकिन पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में जो बदलाव देखने को मिल रहा है वह वैश्विक लेवल पर महिलाओं को सुदृढ़ बनाता है। अगर हम बात करें भारत सरकार की सबसे सफल और महत्वाकांक्षी योजना ड्रोन दीदी की, तो इसने महिलाओं की न केवल आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है बल्कि महिलाओं को एक नई पहचान देने का काम किया है। पहले जो घर के काम काज तक सीमित रहती थीं या खेतों में काम करती थीं या कम पढ़ी लिखी थीं, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वह रिमोट ड्रोन ऑपरेटर के तौर पर काम करेंगी, ड्रोन उड़ाएंगी। लेकिन सरकार के ड्रोन दीदी योजना के आने के बाद 10वीं पास महिलाओं को एक ऐसा अवसर सामने आया जिसके जरिए उन्होंने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की बल्कि कृषि में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ड्रोन दीदी परियोजना की शुरुआत लगभग 1261 करोड़ रुपए के धनराशि के साथ की गई थी और इसमें सबसे बड़ी जो बात थी, देश के 15,000 समूहों को टारगेट करके रखा गया था कि जो महिलाएं 10वीं पास हैं, जिनके पास घर का काम करने काज करने के अलावा बाहर जाकर के वो काम कर सकती हैं, ऐसे महिलाओं को चिन्हित किया गया और उन्हें भारत सरकार द्वारा 10 से 15 दिन की रिमोट ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग के दौरान न केवल उनको ड्रोन संचालित करने की ट्रेनिंग दी गई बल्कि कृषि में छिड़काव के लिए उपयोग आने वाली कीटनाशक दवाओं के बारे में, खाद उर्वरक के बारे में, उसके डोज के बारे में भी जानकारी दी गई। इस योजना का परिणाम यह रहा कि जो महिलाएं घर के कामकाज तक सीमित रहती थीं, जिन्हें सिर्फ हाउसवाइफ के नाम से जाना जाता था, उनकी जो सीजन में कमाई थी वह लगभग 40 से 50 हजार रुपए पर मंथ तक पहुंच गई और उनके जरिए जो खेतों में कीट और बीमारियों का प्रकोप होता था उससे जो फसल को नुकसान होता था उसका भी बचाव होना संभव हो पाया। सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को ड्रोन के इस्तेमाल के दौरान जो क्रॉप एरिया था उसमें दवा का डोज देने, उसके अलावा बीमारियों और कीट की पहचान करने, उसके नियंत्रण करने की व्यवहारिक जानकारी प्राप्त हुई है। इससे कृषि में जो केवल पुरुषों का एक छत्र अधिकार था उसमें न केवल महिलाओं का भी अधिकार शामिल हो पाया है बल्कि कृषि में जो हानि का स्तर था उसमें भी कमी लाए जाने में सफलता मिली है। अगर हम बात करें ड्रोन दीदी के सफलता की तो देश भर में करीब 15,000 SHG यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं ड्रोन संचालित कर रही हैं और सरकार के जरिए इन्हें न केवल निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया है बल्कि 8 लाख रुपए का अनुदान भी ड्रोन क्रय करने के लिए प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त जो धनराशि खर्च होती है वह स्वयं सहायता समूह को अपना अंश लगाना होता है और यह देखने को मिला है कि घर के काम काज के साथ महिलाएं जो है खेतों में भी काम कर रही हैं, ड्रोन उड़ा रही हैं और साथ ही कृषि में के हानि के स्तर को भी कम करने में सफलता मिली है। महिला सशक्तिकरण की बात यहीं समाप्त नहीं होती है। पहले जो है किसानों को फसल उपज करने का तो अधिकार था लेकिन यह माना जाता रहा है कि किसान जो है अपनी उपज करते थे लेकिन उन्हें मूल्य तय करने का अधिकार नहीं था। 12 साल के इस दौर में यह भी दौर देखने को मिला है जब किसानों को अपने कृषि उत्पादों का मूल्य तय करने का पूर्ण अधिकार सरकार ने प्रदान किया है और साल 2020 में सरकार ने एक ऐसी योजना लॉन्च की जिसमें से बिचौलियों और आढ़तियों का जो एक छत्र राज था वो पूरी तरीके से समाप्त करने में सरकार कामयाब रही है और 10,000 FPO का टारगेट सरकार ने रखा। और FPO जो है, जैसा कि सभी लोग इस समय जान रहे हैं कि किसानों का एक ऐसा समूह है जो किसान उत्पादन करते हैं, इसमें ऐसे किसान शामिल हैं जो छोटी जोत के हैं, मझोले जोत के हैं, जो थोड़ा थोड़ा उत्पादन करते हैं और जब उन्हें बिक्री करनी होती थी तो उनका मूल्य जो है बिचौलिया तय करते थे, आड़ती तय करते थे, इसलिए उन्हें अक्सर हानि का सामना करना पड़ता था। सरकार ने इसी नजरियों को ध्यान में रखते हुए FPO की अवधारणा को साकार किया और 10,000 FPO गठन करने का टारगेट रखा जिसमें नाबार्ड, SFAC जिसे लघु कृषि व्यापार संघ के नाम से जाना जाता है, इन एजेंसियों को अगुवाई दी कि देश भर के तमाम राज्यों सुदूर क्षेत्र के गांवों में ऐसे किसानों को संगठित करके FPO गठित किया जाए और FPO अलग अलग मुद्दों पर काम करे। कुछ क्षेत्र में जहां काला नमक धान की खेती होती है, सुगंधित धान जिसे कहते हैं, ऐसे किसानों को संगठित करके FPO बनाया जाए, दूध पर काम करने वाले किसानों को संबंधित करके डेयरी का FPO बनाया जाए, मछली उत्पादन करने वाले किसानों को संगठित करके मछली का FPO बनाया जाए। तो किसानों को लेकर के जो विजन तय किया था सरकार ने वह 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो चुका है और देश भर में 10,000 से ज्यादा FPO का गठन किया जा चुका है। आज देश भर में किसान

0: खुद अपने मूल्य तय करता है। हम तमाम ऐसे एफपीओ की बात भी करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने उत्पादों को ले जाने में सक्षम रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि एफपीओ के जरिए किसानों के आय में कितना अंतर आया, उत्पादन में कितना अंतर आया, कीट बीमारियों के नियंत्रण में कितना अंतर आया और इसमें महिलाओं का किस तरीके से सशक्तिकरण हो पाया है। जो भी एफपीओ गठित किए गए उनके लिए सरकार ने बहुत सारी सहूलियतें प्रदान की है। सबसे पहले जो सहूलियत है वह यह है कि सरकार ने एफपीओ के गठन और प्राथमिक संचालन के लिए लगभग 15 से 18 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया है। इसमें ऐसे एफपीओ को 3 साल तक उसके संचालन, उसके सीईओ की सैलरी, ऑफिशियल खर्चा को चलाने के लिए 15 से 18 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा अगर किसान अपना कोई बिजनेस प्लान बनाता है अपने उत्पादों के जरिए उसके प्रोसेसिंग, उसका मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन करने का काम करता है तो उसके लिए 15 लाख रुपए तक का इक्विटी ग्रांट और 2 करोड़ रुपए तक का जो है उनको क्रेडिट ऋण भी प्रदान किया जाता है। तो ऐसे में किसानों को न केवल एक अवसर मिला कि अपना जो है वो मूल्य तय करें बल्कि उनके उत्पाद जो है ब्रांडिंग होकर के, उनका वैल्यू एडिशन होकर के आज विदेशों में निर्यात किए जा रहे हैं और जो विदेशी मानक है उस पर खड़े उतर रहे हैं। इसके अलावा किसानों को खेती में तमाम जरूरतें होती हैं, इक्विपमेंट की, कृषि यंत्र की, कीटनाशक की, खाद उर्वरक की, तो सरकार ने इस मामले में भी किसानों को सहूलियत प्रदान की है। किसानों को खाद बीज की दुकानों के संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, कृषि इनपुट बेचने के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं और कृषि में काम आने वाले यंत्र हैं, चाहे वो पराली प्रबंधन को लेकर के हो, हार्वेस्टिंग को लेकर के हो, प्रोसेसिंग को लेकर के हो या जुताई गुड़ाई निराई से जुड़े हुए हैं। ऐसे कृषि यंत्रों पर बहुत सारे ऐसे स्कीमें चलाई गई जिस पर 80% तक का अनुदान एफपीओ को प्रदान किया जाता है। बहुत सारे ऐसे एफपीओ देश में काम कर रहे हैं जिसे फार्मर मशीनरी बैंक प्रदान किया गया है। इसमें उनको तमाम तरह के ऐसे यंत्र प्रदान किए गए हैं जो पराली प्रबंधन में काम आते हैं। जो हरित प्राधिकरण है उसका जो दिशा निर्देश है कि पराली न जलाया जाए, ऐसे में इन यंत्रों का उपयोग करके एफपीओ पराली प्रबंधन कर रहे हैं, पराली प्रबंधन के जरिए अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं और समय से खेती से जुड़े कार्य संपादित हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम एफपीओ के और फायदों की बात करें तो कुछ ऐसे एफपीओ की भी हम चर्चा करेंगे। जैसे झारखंड के हजारीबाग में महिलाओं का एफपीओ है जिसमें 7000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और इस 7000 महिलाओं में करीब 2500 महिलाएं ऐसी हैं जो शेयर धारक हैं। यह एफपीओ भारत का सबसे ज्यादा बिजनेस व्यवसाय करने वाला, टर्नओवर करने वाला महिलाओं का एफपीओ है जिसे चुरचू नारी ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से जाना जाता है। इस एफपीओ से जुड़ी हुई महिलाएं खुद न केवल अपने उत्पाद तैयार करती हैं बल्कि उसका वैल्यू एडिशन करती हैं, ब्रांडिंग करती हैं और उसका विपणन भी करने का काम कर रही हैं। अगर हम राजस्थान के महिला एफपीओ की बात करें तो यहां पर समृद्धि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी नाम की एक महिलाओं की एफपीओ है जिसमें करीब 2200 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और एक प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन का काम कर रही हैं, मसालों के प्रोसेसिंग का काम कर रही हैं। इन महिलाओं ने साबित किया है कि हम केवल घर के कामकाज तक न सीमित होकर करके अगर इन्हें अवसर प्रदान किया जाए तो यह देश दुनिया तक अपनी पहचान बना सकती हैं और ये पहचान दिलाने में भारत सरकार ने अहम भूमिका निभाई है उन्हें ड्रोन दीदी के जरिए, एफपीओ के जरिए। ऐसे ही एक एफपीओ की हम चर्चा करेंगे जो बदायूं जनपद में स्थित है। यहाँ पर भी 300 महिलाओं का एक एफपीओ काम कर रहा है जो अलग अलग उत्पादों को तैयार करता है, उत्पादित करता है, उनकी ब्रांडिंग मार्केटिंग करने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के जनपद की अगर बात करें तो यहाँ पर 11 जनपदों का एक विशेष चावल है जिसे काला नमक के नाम से जाना जाता है और ये जीआई टैग प्राप्त चावल है। पहले जो है इस चावल का मूल्य जो है 60 से 70 रुपए प्रति केजी जाता था, लेकिन एफपीओ की अवधारणा आने के बाद बहुत सारे ऐसे एफपीओ गठित हुए जिन्होंने काला नमक की न केवल वैश्विक लेवल पर मार्केटिंग ब्रांडिंग की बल्कि आज काला नमक बौद्धिस्ट देशों में बुद्ध के प्रसाद के तौर पर 1500 रुपए प्रति केजी तक जा रहा है और आमतौर पर औसत जो भारत में काला नमक चावल का विक्रय हो रहा है वो लगभग 150 से लेकर के 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जा रहा है। इसी तरीके से सृष्टि नाम की एक एफपीओ है जो उत्तर प्रदेश के तराई जनपद में ही महाराजगंज में स्थित है। यहाँ 1500 महिलाओं का एक एफपीओ है जो वहां के आम और काला नमक का निर्यात करता है, उसके प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करके विदेशों में निर्यात करने का काम कर रहा है। एफपीओ की अवधारणा की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं रहती थी जब किसान के पास थोड़ा अनाज उत्पादन होता था और उनको मार्केट में या मंडी ले जाने में समस्या होती थी, तो ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जहां पर दलहनी फसल होती है। तो दलहनी फसलों वाले क्षेत्र में ऐसे एफपीओ किसानों को संगठित किया गया और सरकार ने एक बड़ा अवसर यह प्रदान किया कि जिन किसानों के पास अपनी खेती की खुद की जमीन है, खुद खेती करते हैं और खुद उत्पादन से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही लोगों को एफपीओ का डायरेक्टर नियुक्त होने का अधिकार प्रदान किया गया, ऐसे ही लोगों को सदस्य या शेयरधारक होने का अवसर प्रदान किया गया। सरकार ने इस नीति में ऐसे लोगों को बाहर कर दिया जो किसानों के नाम पर बिचौलिया बनकर के उनके उत्पाद को औने पौने रेट पर खरीदते थे, तो ऐसे किसान संगठित हो पाए हैं और जो छोटा छोटा उनका उत्पाद है वो एक जगह पर एक संगठन के तौर पर एकत्रित होता है और फिर वह एफपीओ उसके ब्रांडिंग मार्केटिंग वैल्यूडेशन करने के बाद उसका मूल्य खुद निर्धारित करता है और एफपीओ द्वारा तय किए गए मूल्य पर यह बिक्री होता है। बहुत सारे आउटलेट्स एफपीओ के चल रहे हैं देश भर में। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और खासकर देश की राजधानी दिल्ली में पूसा में भी एफपीओ के बहुत सारे आउटलेट हैं। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में किसानों का एक बाजार सरकार ने खोला हुआ है जहां पर बहुत सारे एफपीओ अपने उत्पादों को ले आकर के वहां पर प्रदर्शित करते हैं, उनके आउटलेट खुले हुए हैं और किसानों द्वारा तय किए गए मूल्य पर ही उत्पाद लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। सरकार ने इसमें लगभग 6585 करोड़ रुपए का प्रावधान किया एफपीओ गठन के लिए और इसमें जिन एजेंसियों को लगाया गया, इन एजेंसियों ने न केवल एफपीओ गठन कराने का काम किया बल्कि वह एफपीओ का परिचालन कैसे करेंगे, संचालन कैसे करेंगे, साथ ही अपना बिजनेस प्लान कैसे तैयार करेंगे और बिजनेस प्लान को सफल कैसे करेंगे, इन सारी चीजों को लेकर के व्यावहारिक और जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो दोनों तरह की ट्रेनिंग प्रदान की। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका नाबार्ड ने निभाई, एसएफएसी ने निभाई और नाबार्ड और एसएफएसी जैसी जितनी भी एजेंसियां काम कर रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की एक एजेंसी है सीमा द्वारा जो एफपीओ गठित किए गए, ऐसे सभी एफपीओ को शुरुआती 3 साल के परिचालन के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई, ड्रोन क्रय करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए गए है, कीटनाशक, खाद बीज, कृषि यंत्र, इसके अलावा अनाज में जो नमी होती है उसको कम करने के लिए तमाम तरह के आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रावधान किया गया है। तो पिछले 12 सालों में देश में किसानों की हालत न केवल सुधरी है बल्कि जो महिलाएं गांव तक सीमित थीं, अपने घरों तक सीमित थीं, घूंघट तक सीमित थीं, वह महिलाएं घर से निकल करके एक ड्रोन पायलट के तौर पर काम कर रही हैं, खेती में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, साथ ही जो किसान आढ़तियों और बिचौलियों के चंगुल में फंसे हुए थे वह आढ़तियों और बिचौलियों के चंगुल से मुक्त होकर के खुद अपने मूल्य का निर्धारण कर पा रहे हैं। सरकार की जो धारणा थी किसान लागत की अपेक्षा कम से कम 2 गुना आय प्राप्त करे, एफपीओ के आने के बाद इस धारणा को और ज्यादा बल मिला है और आज के दौर में बहुत सारे ऐसे एफपीओ हैं जो 4 से 5 गुना तक भी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और यह सब कुछ संभव हुआ है वर्तमान सरकार के दूरदर्शी नजरिए से और उसके मजबूत इरादे के साथ।
1: तो पहल बहन, बहुत ही अच्छी जानकारी अभी हमारे सभी किसान बहन भाइयों को मिली है। वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम के तहत जिसमें महिला सशक्तिकरण और एफपीओ के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसके बारे में ये जानकारी दे रहे थे वार्ताकार बृहस्पति कुमार पांडे। और सरकार ने ऐसी बहुत सी योजनाएं हमारे सभी किसान बहन भाइयों के लिए चलाई हुई है पायल बहन, उन्हीं में से एक योजना है गोवर्धन योजना।
2: बिल्कुल सही कहा आपने अतुल भाई, गोवर्धन योजना यानी GOBAR धन योजना भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य पशुओं के गोबर और जैविक कचरे को बायोगैस व जैविक खाद में बदलना है। ये ग्रामीण स्वच्छता में भी अतुल भाई सुधार लाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, किसानों की आय बढ़ाने में भी ये मदद करता है। भाई पशुपालन के साथ साथ भाई इनके गोबर से भी आप ये योजना का लाभ उठा सकते हैं और इसका एक तरह से जो पूरा नाम है वो है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, है ना। और इसका जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इस योजना का एक नोडल विभाग है, इसके अंतर्गत ये योजना
1: कार्य कर रही है योजना। और देखो गांवों को स्वच्छ रखना पायल बहन और ठोस कचरे का सुरक्षित प्रबंधन करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और गाय के गोबर और कृषि अपशिष्ट का उपयोग करके बायोगैस, बायो CNG और जैविक उर्वरक तैयार करना, यानी कि हमारे जो किसान भाई हैं पायल बहन वो अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों को कम करके जैविक खाद का प्रयोग अगर करते हैं तो उनका जो फसल का उत्पादन है वो भी बढ़ता है।
2: बिल्कुल, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी
1: बिल्कुल
2: बहुत अच्छी आएगी। ग्रामीण परिवारों और किसानों को अतिरिक्त आय का साधन एक तरह से इससे प्रदान होता है। आर्थिक सहायता स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण के तहत गांव में सामुदायिक या क्लस्टर बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए जिला जो है वो 50 लाख तक की वित्तीय सहायता इसमें।
1: हाँ, अगर कोई भी हमारा किसान भाई अगर करना चाहता है तो वो जो है वित्तीय सहायता उसे मिल सकती है 50 लाख रुपए तक की। और देखिए आवेदन करने

0: की प्रक्रिया यही है कि अपने राज्य या जिले में चल रही परियोजनाओं की स्थिति या इसके लाभार्थी की पात्रता के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं। जनसेवा केंद्र पर जाकर के भी आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और देखिए पायल बहन, अब गर्मी का मौसम भी चल रहा है और हमारे जो किसान भाई हैं भाई, वो धान की नर्सरी की भी तैयारी जो है कर रहे हैं। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई अगर बारिश हुई है, जैसे देख रहे हैं कि बारिश, एक दो बारिश भी हो चुकी है, तो खेत के अंदर खरपतवार भी इस समय पैदा हो जाते हैं। तो अपने खेत की भाई नर्सरी आप लगाना जब तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 बार आप अपने खेत की जो है जुताई अवश्य कर लें, जिससे खेत में जो है खरपतवार है वो नष्ट हो जाए और अपना जो है अपना धान की रोपाई आप समय से कर सकें।
1: तो आइए, ये तो रही काम की बात अतुल भाई, और अब करवाते हैं अपने सभी भाई बहनों का मनोरंजन और सुनवाते हैं एक उपदेश
0: ब्रजेश की आवाज में।

0: तो ब्रजेश के इस उपदेश के साथ ही अतुल भाई हमारा आज का ये कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है। सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी राम राम, राम।
1: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पारासर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं गजल कव्वाली।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 8:45 होने को कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
5: PLI है ना?
6: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
7: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 42 जनकल्याण शिविर आयोजित किए। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन सहित अन्य ग्रुप सी के खाली

0: ने 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान से प्रेरित है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाले इन शिविरों में नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिल सकेगा।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारे की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इन शिविरों में पिंक कार्ड, राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, लखपति बिटिया योजना और प्रधानमंत्री उदय योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सेवाएं शामिल हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा ने विश्वास नगर क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित जन कल्याण शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक ओम प्रकाश शर्मा, अभय वर्मा और संजय गोयल भी शामिल रहे। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहेब सिंह ने आज दिल्ली सरकार द्वारा बंगाली मार्केट और एनडीएमसी सामुदायिक केंद्र में आयोजित जन कल्याण शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि इन शिविरों में आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, विधवा और विवाह सहायता योजनाएं सहित अनेक जनहितकारी सेवाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविरों में आने वाले लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा ने 12 साल विश्वास के विकास के और जन कल्याण के अभियान के अंतर्गत आज भोलानाथ नगर से घर घर संपर्क अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान श्री मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश में हुए परिवर्तनकारी विकास कार्यों, जनहितकारी योजनाओं और सुशासन की उपलब्धियों के बारे में स्थानीय नागरिकों से संवाद किया।
2: प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 2014 में 200 से अधिक योजनाएं जन कल्याण की बनाई, न केवल बनाई बल्कि उनको मूर्त रूप दिया। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने ये योजनाएं बनाई और कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ मिला है।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने की रणनीति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान तरणजीत सिंह सिंधु ने पूर्व अग्निवीरों के कौशल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डन, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड सहित ग्रुप सी के खाली पदों पर सीधी भर्ती में 20% आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे बताया कि सभी को समान अवसर देने और देश के लिए उनकी सेवा को सम्मान देने के उद्देश्य से इस प्रावधान के अंतर्गत भर्ती योग्य पूर्व अग्निवीरों के लिए खुली रहेगी। श्री संधू ने आगे बताया कि सभी संबंधित विभागों के लिए भर्ती नियमों में जरूरी बदलाव और प्रक्रियाएं पूरी करने की समय सीमा इस महीने की 30 तारीख तय की गई है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं ज्योत्सना पांडे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। आईआईटी दिल्ली को वैश्विक स्तर पर 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। एक रिपोर्ट।
4: शिक्षा मंत्रालय के अनुसार जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने 75 पायदान ऊपर चढ़कर 686वीं रैंक हासिल की है। इसके साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान वैश्विक रैंकिंग में 105वें स्थान पर शामिल है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में 52 भारतीय संस्थान शामिल हैं, जिनमें से 13 भारतीय विश्वविद्यालयों ने दुनिया के शीर्ष 550 संस्थानों में जगह बनाई है। आईआईटी बम्बई और आईआईटी मद्रास भी विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में देश के कुल 52 संस्थानों को स्थान मिला है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की

0: अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने एक संदेश जारी कर विद्यार्थियों को अपनी तैयारियों पर भरोसा रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। एजेंसी ने कहा कि उम्मीदवारों ने साल भर कड़ी मेहनत की है और अब उनका पूरा ध्यान परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने पर होना चाहिए। एजेंसी ने छात्रों को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। एजेंसी ने कहा कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल या अनुचित गतिविधि के प्रयास में सख्ती से निपटा जाएगा। एजेंसी ने अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और आम जनता से अफवाहों पर विश्वास न करने तथा अपुष्ट जानकारी साझा न करने की सलाह दी है। केवल एजेंसी के आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करने को कहा गया है। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने इस वर्ष की शुरुआत में विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान और ई प्रतिज्ञा मंच के शुभारंभ का उल्लेख करते हुए छात्रों से नशा मुक्त भारत के राजदूत बनने और नशे की समस्या के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया। दिल्ली सरकार ने गेस्ट टीचर्स द्वारा जनगणना कार्यों में बिताई गई अवधि को आधिकारिक तौर पर नियमित कार्य दिवसों के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह निर्णय शिक्षकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय हजारों गेस्ट टीचर्स के पेशेवर हितों की रक्षा के लिए एक शिक्षक हितैषी कदम है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज द्वारका स्थित नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अटल इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सूद ने कहा कि यह केंद्र दिल्ली के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को नई दिशा देगा। नींव, दिल्ली AI ग्राउंड और दिल्ली स्टार्टअप युवा फेस्टिवल जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार ऐसी व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: अटल जी के नाम से अटल इंक्यूबेशन सेंटर और नेताजी सुभाष चंद्र NSUT में, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, इस प्रकार का एक इकोसिस्टम खड़ा किया जा रहा है जो अपने अपने तरीके से नए नए प्रोजेक्ट्स के आइडियाज को सोचकर आगे बढ़ाने वाले युवाओं को पैरों पर खड़ा होने का, जहां उन्हें फेलियर का डर ना हो, जहां उन्हें सक्सेस प्राप्त होने पर धोखे का डर ना हो, जहां उन्हें सही गाइडेंस ना मिलने का खौफ ना हो, ये प्रयास NSUT और AIC अटल इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा किया गया है। इससे दिल्ली के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत बल मिला।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज राजौरी गार्डन स्थित राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय में जन कल्याण शिविर का उद्घाटन किया। श्री सिरसा ने बताया कि इन शिविरों में कई केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आम नागरिक तक सरल और सुगम तरीके से पहुंचाना है।
2: इन जन कल्याण शिविर के अंदर पिंक कार्ड बनाना हो, राशन कार्ड बनाना हो, आधार कार्ड बनाना हो, हमारी दिल्ली सरकार की स्कीमें हो या भारत सरकार की केंद्रीय स्कीमें हो जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं, उनके 12 साल के उपलक्ष्य में ये कैंप लगाए गए हैं। इसके अंदर आज लोगों को आयुष्मान कार्ड भी बना के दिया जा रहा है, आज लोगों को हेल्थ कार्ड भी बना के दिया जा रहा है, लोगों को इनकम सर्टिफिकेट भी बना के दिया जा रहा है। ये अपने आप में एक समूह बनाया गया जिसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की सारी स्कीमों का एक जगह शिविर कैंप लगाकर लोगों के लिए एक बड़ा काम करने का काम किया है।
0: ये शिविर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र

0: गुप्ता ने बताया कि दिल्ली विधानसभा ने वर्ष 2026-27 के लिए सदन की विभिन्न समितियों का गठन कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: नवगठित समितियों के महत्व के बारे में श्री गुप्ता ने कहा कि ये समितियां जन कल्याण से जुड़े विषयों पर प्रभावी निगरानी, गहन निरीक्षण तथा सुव्यवस्थित विचार विमर्श सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नामित सदस्यों का सामूहिक अनुभव दिल्ली में लोकतांत्रिक जवाबदेही को और मजबूत करेगा। श्री गुप्ता ने कहा कि ये समितियां विधानसभा की कार्यकुशलता, जवाबदेही और जनहित से जुड़े विषयों पर प्रभावी निगरानी को और अधिक सुदृढ़ करेंगी। इन समितियों में कार्य मंत्रणा समिति, सरकारी आश्वासन समिति, नियम समिति, महिला और बाल कल्याण समिति, पर्यावरण समिति, अल्पसंख्यक कल्याण समिति तथा अन्य शामिल हैं। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय शिशु तस्करी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभियान के दौरान 5 नवजात शिशु को भी बचाया गया। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान 3 लाख रुपए से अधिक की नकदी भी जब्त की है। एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता 2026 कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। 19 से 24 जून तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 34 देशों के 400 से अधिक खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। ओलंपियन भवानी देवी का इस प्रतियोगिता में 24 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व कर रही हैं। राजधानी में आज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा धूप रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 42 जन कल्याण शिविर आयोजित किए। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन सहित अन्य ग्रुप सी के खाली पदों पर भर्ती में 20% आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया। विश्वविद्यालय क्यूएस रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली एक बार फिर देश का सर्वोच्च संस्थान बना। और एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता कल से नई दिल्ली में शुरू। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर. प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत मालिका, आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन. सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है.

अभी आपने गीत सुना फिल्म वारिस से, अमृता सिंह और राज बब्बर पर फिल्माया गया गीत और लता मंगेशकर के

खबर में कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीत मालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम अपने दोस्त मोहन के साथ आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। सभी श्रोताओं का फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कार्यक्रम में चुने हैं कुछ चुनिंदा गीत जो आपको बेहद पसंद आते हैं और दिल को भाते हैं, हर कोई सुनना चाहता है ताकि हर किसी को लगे कि वो गीत उसके लिए है। ऐसी कोशिश हमारी तरफ से आप सब श्रोताओं के लिए।

अभी आपने गीत सुना हीरो फिल्म से, तू मेरा हीरो है, अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं गीत मालिका, गीतों की माला, ऐसे गीत जो आप सबको पसंद आते हैं, जिन्हें हर कोई सुनना चाहता है। हमारा प्रयास आपके लिए। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है सुर फिल्म से, लकी अली की आवाज़ में।

तुम्हारी यादों का मौसम बड़ा सुहाना है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। बशीर बद्र साहब की ये बोल बहुत कुछ कह जाते हैं। बहुत उम्दा शायर थे, बहुत बेहतरीन शेर उन्होंने लिखे, अपने आप में एक मुकाम थे। कुछ ही वक्त पहले उनका निधन हुआ और उर्दू को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कोई अच्छाई हमारे बीच से चली जाए तो उसकी यादें रह जाती हैं, उसका साथ एक कमी के रूप में महसूस होता है, एक अपनापन हम ढूंढते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये साथ हमेशा बना रहता तो बहुत अच्छा होता।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीत मालिका कार्यक्रम आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सिलसिला से।

सिलसिला फिल्म से आपने गीत सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, जावेद अख्तर के बोल और शिव हरी का संगीत। गीत अपने आप में उम्दा, संगीत अपने आप में बेहतरीन, कालजयी रचना, ऐसे गीत हम आपको सुनाना चाहते हैं गीत मालिका कार्यक्रम में। आइए अब सुनते हैं चमेली फिल्म से गीत सुनिधि चौहान के स्वर में।

और श्रोताओं, गीतमाला कार्यक्रम में अब आखिरी गीत फिल्म कामचोर से लता मंगेशकर की ही आवाज में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, और गीत को सुनते हैं, बहुत अच्छा गीत है, आप सभी को पसंद आएगा।

श्रोताओं, इस गीत के साथ मुझे आपसे लेनी होगी इजाजत। यही आपसे मेरी गुजारिश है कि अपना अपनों का ख्याल रखिए, जिंदगी में प्यार बनाए रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे बात होगी, तब तक अपने दोस्त मोहन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021, वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांस

0: improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation at the AI Country Partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
0: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंटकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में

0: पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉ आर श्रीधर को

0: सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. Four Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the Viva Tech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said, technology can lead to progress only when it's democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all.
2: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at Viva Tech 2026 reflects this very vision.
1: The Prime Minister highlighted that in the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology.
2: In the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms, we are using technology.

0: नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सरकर्दा कारोबारी लीडरों के साथ भी मीटिंग की ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी और तकनीकी तआवुन को और भी मजबूत किया जा सके। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: पेरिस में वीवा टेक 2026 समिट से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि टेक्नोलॉजी हर हाल में सब तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने मालियाती शमूलियत, तालीम, हिफ्जान सेहत और ज़राअत जैसे शोबों में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट को उजागर किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अब दुनिया के बरवक्त होने वाले डिजिटल लेन देन का तकरीबन आधा हिस्सा UPI से तय पाता है और अब ये फ्रांस में भी दस्तयाब है। इससे कबल दिन में आज जनाब मोदी ने फ्रांस के बड़े CEO से मुलाकात की। सेंट गोबेन, मिस्टर ले आए और CMA CGM लीडरों ने भारत की तरक्की के इम्कानात में एतमाद का इजहार किया और मैन्युफैक्चरिंग, मसनूई जहानत और सब्ज जहाजरानी के शोबों में ज्यादा सरमायाकारी और शराकतदारी के मंसूबों का ऐलान किया। वजीर आजम इस वक्त एक अधीमुशान सकाफती प्रोग्राम बोंजो में शिरकत कर रहे हैं जिसे पेरिस में सॉल पेलेल सेंटर में भारतीय बरादरी ने मुनाकिद किया है। फ्रांस के शहर पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीब रहमान।
0: वजारत खारजा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के अहम नतायज को उजागर किया। पेरिस में मीडिया से बातचीत करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि दौरे के दौरान तीन अहम सुतूनों तिजारत, टेक्नोलॉजी और इलाकाई नीज बैनल अक्वामी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने नीज में मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स स्कीम का इफ्तिताह किया जो भारत में टेक्नोलॉजी की महारत वाले स्टार्टअप्स के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। इस प्रोग्राम में भारत के 120 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने शिरकत की। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इतवार को NEET UG के दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने की गरज से आज आला सतह की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने इम्तिहान के अमल में सालमियत, शफाफियत और सलाहियत के आला तरीन मेयार को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने तमाम मुतालिका अहलकारों को हिदायत दी कि वह निगरानी कायम रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि दोबारा होने वाले इम्तिहान को आजादाना और सिफाना तौर पर मुनाकिद किए जाने के लिए तमाम जरूरी इंतजामात हों। जनाब प्रधान ने कहा कि वजारत की जानिब से नामजद अफराद तमाम रियासतों में तैनात होंगे ताकि वो इम्तिहान से मुतालिक सरगर्मियों से तालमेल कायम रखें और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की सदारत में कायम मरकजी कमान सेंटर को रिपोर्ट करें। मीटिंग के दौरान रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से भी ये कहा गया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उम्मीदवारों को सभी जरूरी सहूलियात मुहैया कराई जाएं जिसमें इम्तिहान में बैठने के मुनासिब इंतजामात और पीने का पानी शामिल है ताकि वो हर किस्म के दबाव से पाक माहौल में इम्तिहान दे सकें। NEET UG इम्तिहान 2026 में अब जबकि सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने एक पैगाम जारी करते हुए कहा है कि उम्मीदवारों को चाहिए कि पुरसुकून रहें और अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। एजेंसी ने कहा कि उम्मीदवारों ने पूरे साल सख्त मेहनत की है, लिहाजा अब उन्हें मुनासिब सुकून और इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। NTA ने एक महफूज, मुनसिफाना और शफाफ माहौल में इम्तिहान मुनाकिद कराए जाने की यकीन दहानी भी कराई है। वजारत तालीम ने आज बताया कि यूनिवर्सिटी की QS आलमी दर्जाबंदी 2027 में 52 भारतीय तालीमी इदारे शामिल हैं। भारत की जानिब से सबसे ऊपर के दर्जे में IIT दिल्ली है जो आलमी सतह पर 118वें नंबर पर है, जबकि IIT बॉम्बे और IIT मद्रास भी दुनिया की बेहतरीन 200 यूनिवर्सिटीज में शामिल हैं। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि आलमी सतह पर भारत के तालीम से मुतालिक नक्शे कदम मुसलसल वसत इख्तियार कर रहे हैं। अकलियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में 2027 की हज जायजा मीटिंग की सदारत की। जायजा मीटिंग के बाद नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए जनाब रिजिजू ने 2026 के हज को भारत की तारीख में सबसे ज्यादा कामयाब हज करार दिया। वजीर मौसूफ ने बताया कि 2026 के हज के लिए सऊदी अरब के हज और उमरे की वजारत ने भारत को 2 लब्बैतुम अवार्ड अता किए। उन्होंने बताया कि सरकार 2027 के हज के लिए जल्द ही नई हज पॉलिसी का ऐलान करेगी। مرکزی وزیر امیت شاہ نے آج نئی دلی میں کئی جائزہ میٹنگوں کی صدارت کی اور کو

0: बाद इन तवाफुक नामे ये 14 मादे मादेई के पीश अज जलसे ये बरनामे रीजी शुदे दर स्वीस दर बेसूरत इलेक्ट्रॉनिकी इमजा शुद और तशबस फौरी बरकरार मिकुनाद हर दो तरफ रा बे खुददारी अज इकदाम खसमाने मुतअहद मिकुनाद व चारचूबी रा बराई रसीदगी बे इख्तलाफात दीरी ने बरसर बरनामे ये हस्ते ईरान व मसाइल अमनियत मंतकेई तईन मिकुनाद तब के इन तफाहुमनामे अयालत मुत्तहिदे लगवे मुहासरे ये दरियाई खुद दर अतराफ ईरान रा आगाज खाहत कर व ज़र्फ़ सी रूज बराई बाजगर्दान तराफी के दरियाई आदि अज तरीके तंगे हुरमूज तलाश खाहत कर ईरान नीज बे नोबे ये खुद मुतअहद शुदेस के उबूर ईमन बराये किश्तीरानी तजारी रा तसहील कुनद व मुजद्दन ताकीद कर दिया कि बेदुम्बाले सलाहाई हस्ते ही न खाहत बूद इन तवाफुकनामे हमचनीन बरनामे हाई रा बराये मुजाकरात दर मुरिद काहिश तहरीम हा बासाजी इक्तसादी व मुदीरियत आयंदे ये जखायर यूरानियम गनी शुदे ईरान तहत नजारत बैनुलमिल्ली तशरीह मी गुनाद हर दो तरफ तवाफुक कर दें कि ज़र्फ़ शस्त रूज बेदुम्बाले यक तवाफुक नहाई बाशन अगरचे इन मोहलत मुमकिनस्त बा रजायत मुतकाबिल तमदीद शवद तब के मफाद आन आतिश बस बिल लबनान नीज गुस्तरिश में अवद व तरफेन रा बे पायान दादन बे अमलियात निज़ामी दर जम्बेहाई मुख्तलिफ मुतअहद मी कुनाद दर्जा में जहानी ये फीफा ये साल 2026 इमशब जमहूरी चेक दर गुरु है ए दर वर्जिशगा है एटलांटा दर आयालत मुत्तहिदे बे मसाफे अफ्रीका ये जुनूबी रफ्ते आस्त इन मुसाबके साअत 9:30 दकीके ये हिंद वक्त हिंद आगाज शुदे आस्त सिपस स्विस दर गुरु है बी दर वर्जिशगा है लॉस एंजलिस दर आयालत मुत्तहिदे साअत दवाजदा ओ सी ए बामदाद बे वक्त हिंद बे मसाफ बूसनी व हर्ज गोविन खाहदराफ्त पीश अजीन कोलम्बिया कार खुदरा बापी रूजी ए काते से दर बराबर के मुकाबिल उज्बेकिस्तान दर गुरु है के दर वर्जिशगा है इस्तादियो अज़्तेका दर मेक्सिको सिटी आगाज कर दे बूद पाया ने पक्ष अखबार अजाकाशवानी दहली
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای پرستو.

0: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on major takeaways from G7 Summit and Prime Minister's meetings with world leaders. The participants are Professor Rahul Mishra, International Affairs expert, and Deeksha Saxena, Akashvani correspondent.
1: Orville Bear hosted the 52nd G7 Leaders Summit. Prime Minister Narendra Modi participated in the summit as India is a partner country in the G7. He also addressed the sessions on forging new partnerships and rebuilding international solidarity, and the second session on reviving a balanced, shared and sustainable economic growth for all. He also held multiple bilateral meetings on the sidelines of the summit. To talk more about this, we are now delighted to be joined by Professor Rahul Mishra, International Affairs expert. Professor Mishra, welcome to Akashvani News.
2: Thank you.
1: Professor Mishra, I just mentioned that Prime Minister Modi had a number of bilateral meetings on the sidelines of the summit. One of the most important bilateral meeting was between Prime Minister Narendra Modi and President of United States of America, President Donald Trump. So while delivering his statement during his meeting with President Trump, Prime Minister categorically emphasized that it is important to maintain the freedom of navigation. And he also said that it is important to ensure the security of seafarers. So before we proceed any further, let's first listen to what Prime Minister had to say.
3: एक्सलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ. आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी. एक्सलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है. एक्सलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए. एक्सलेंसी, आप जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है. एक्सलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है. मुझे पूरा विश्वास है कि

0: ये वाला रेफ्रिजरेटर देखिए मैडम, ये इसका अंडों का रैक, और इस शेल्फ को जरा सरका दें तो लंबी बोतल भी फिट हो जाएगी मैडम, सॉरी, और ये इसका रोल बॉन्ड फ्रीजर, बस आधे टाइम में बर्फ तैयार, सॉरी, और हाँ ये इसका जबरदस्त कंप्रेसर, फटाफट ठंडा करे और बिजली भी बचाए, और इसका स्पेशल फोम वाला दरवाजा, ठंड बाहर आ ही नहीं सकती मैडम, बस आप इसे खरीद ही लो।
1: Kelvinator, the coolest one.
2: जी मैं एक सीटी विशेषज्ञ हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है कि इंसान के पास हर मौके के लिए सीटी है, जैसे पिक्चर हॉल में सीटी, बिना चटकनी के बाथरूम में नहाते हुए सीटी, ओ जी खूबसूरत चेहरा सामने हो तो बजी सीटी होए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कैल्विनेटर रेफ्रिजरेटर खुला हो तो कैसे बजेगी सीटी? ओ जी इतनी ठंड में आपकी सीटी नहीं बैंड बज जाएगी। हाँ
1: कैल्विनेटर, the coolest one.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, हवाई अड्डा नेटवर्क और विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई है जबकि मेट्रो कनेक्टिविटी 4 गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिंदी में प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री स्वदेश रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मूज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनकी स्विट्जरलैंड जाने की योजना है। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेस्का को 5-0 से हराया। आज क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे, वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुके हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कर 10 मिनट और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें आप सुनेंगे गोल्डन एरा की वो गाने जो आज भी हम सबके दिलों पर राज करते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे और ये है आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल और मैं हूं आपके साथ विकास। अभी आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा गीत। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where

0: Invention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात कर विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, हवाई अड्डा नेटवर्क और विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई है जबकि मेट्रो कनेक्टिविटी 4 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा है कि सुदृढ़ नीतिगत ढांचे और सरकार की नवोन्मेषी पहल से भारत विश्व के प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा देशों में से एक बन गया है। नई दिल्ली में 10वीं हरित और सतत विकास साझेदारी परिचर्चा श्रृंखला में नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए ऊर्जा सुरक्षा पर अपने संबोधन में श्री सारंगी ने ये बात कही। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को पारगमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकाबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मूज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनके स्विट्जरलैंड जाने की योजना है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो ईरान के साथ शांति समझौते लागू करने में बातचीत का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा। इससे दोनों टीमों के नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद अमेरिका के लॉस एंजलिस स्टेडियम में ग्रुप बी के मैच में भारतीय समयानुसार रात 12:30 से स्विट्जरलैंड का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। उधर चीन के ग्वांगडोंग में विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाते हुए भारत ने मौजूदा चैंपियन हांगकांग चीन को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has projected India as a global hub of innovation and technology yesterday while addressing the Viva Tech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said technology can lead to progress only when it is democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all. The Prime Minister highlighted that in the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. Mr. Modi also held meetings with the leading French business leaders to deepen economic and technological cooperation between the two countries. Prime Minister Modi has stated that India is not only preparing for the future, but is actively shaping it through innovation, technology and people-driven development. Addressing the Indian community at the Bonjour Modi program in Paris yesterday, the final event of his France visit, the Prime Minister highlighted India's rapid transformation over the past 12 years.
0: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड तीन गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क चार गुना बड़ा हो गया है.
2: Referring to the Bharat Innovates program, the NEES and Viva Tech in Paris, he said the world is witnessing India's growing innovation strength. Earlier, French President Emmanuel Macron thanked Mr. Modi in Hindi through a social media post. Later, Prime Minister departed for India. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has approved large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price MSP for four states through video conferencing. The ministry said the procurement will be carried out under the price support scheme in Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. Uttar Pradesh has emerged as the biggest beneficiary for the summer 2026 season. Procurement of 48,298 metric tons of moong, 97,970 metric tons of urad and 41,718 metric tons of brown nut has been approved for the state. In Gujarat, procurement of 18,250 metric tons of moong has been cleared for the season. Mr. Chauhan also approved an increase in the moong procurement limit for Tamil Nadu under the Rabi marketing season 2025-26 from 885 to 990 metric tons, enabling the purchase of an additional 105 metric tons. Union Minister Dr. Jitendra Singh has announced that Kathua district will soon be connected through the Delhi-Amritsar-Kathua Express Corridor and will also get a gas pipeline network aimed at boosting connectivity, industrial growth and access to clean energy. He said this while addressing a public gathering near Kilochak Pond in the Jastora Assembly constituency of Kathua district yesterday as part of an outreach program marking 12 years of the Narendra Modi-led government. Dr. Singh said a gas pipeline project for Kathua is also in the pipeline and is expected to be implemented soon, providing cleaner and more efficient energy access to residents and industries. The minister said the tender for the proposed homeopathy college in Kathua has already been floated and the foundation stone for the institution will be laid shortly. In snooker, India entered the final of the World Team Championship with a 3-1 win over defending champions Hong Kong, China and Guangdong yesterday. The Indian pair of Pankaj Advani and Aditya Mehta dominated the semi-final. India will face the winners of the other semi-final between hosts China A and Korea in the title clash tomorrow morning. India last won the championship in Myanmar 7 years ago. In the FIFA World Cup 2026, Czechia and South Africa played out a 1-1 draw in the Group A clash at Atlanta Stadium in the United States. The result keeps the knockout stage hopes of both the teams alive as each side has lost their opening matches. The Group B encounter between Switzerland and Bosnia and Herzegovina is currently underway at Los Angeles Stadium in the USA. India Meteorological Department IMD has forecast isolated heavy to very heavy rainfall over northeast India, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the week. Similar conditions are expected over Bihar, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till today. The Met Department said conditions are favourable for further advance of the southwest monsoon into parts of Telangana, Odisha, Jharkhand, Bihar and Chhattisgarh over the next 4 to 5 days. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है. रात के 2:10 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं. आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार, नॉन स्टॉप फिल्म संगीत.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण

0: निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को हिंदी में एक विदाई वीडियो पोस्ट भेजा, जिसमें उन्होंने श्री मोदी को प्रिय मित्र बताते हुए कहा कि फ्रांस आपसे प्यार करता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश की यात्रा के लिए धन्यवाद दिया और इसे बेहद सफल बताया। उन्होंने फरवरी में उनसे दोबारा मिलने की उम्मीद भी जताई। श्री मैक्रों ने कहा कि फ्रांस उनसे प्यार करता है। प्रधानमंत्री स्लोवाकिया और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने नई दिल्ली में कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस साझेदारी का उद्देश्य देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण और अल्प सुविधा वाले इलाकों में सरकारी खरीद अवसरों तक पहुंच बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाल और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने कहा कि तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद की जाएगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को पारगमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मूज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनकी स्विट्जरलैंड जाने की योजना है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो ईरान के साथ शांति समझौते लागू करने में बातचीत का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा। इससे दोनों टीमों के नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। उधर चीन के ग्वांगडोंग में विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाते हुए भारत ने मौजूदा चैंपियन हांगकांग को हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has projected India as a global hub of innovation and technology yesterday while addressing the Viva Tech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said technology can lead to progress only when it is democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all. The Prime Minister highlighted that in the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. Mr. Modi also held meetings with leading French business leaders to deepen economic and technological cooperation between the two countries. Prime Minister Modi has stated that India is not only preparing for the future, but is actively shaping it through innovation, technology and people-driven development. Addressing the Indian community at the Bonjour Modi program in Paris yesterday, the final event of his trans visit, the Prime Minister highlighted India's rapid transformation over the past 12 years.
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। समय हुआ है 3:10 अब आप हैं मेरे साथ, मैं हूं चेतन, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गजल गीत। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति कलाकार हैं पंडित अनूप जलोटा और निहारिका सिन्हा, गजल के गुलकार हैं मिर्जा गालिब, और संगीत का निर्देशन किया है निहारिका सिन्हा ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति के रूप में बहुत ही खूबसूरत गजल।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में एक बहुत ही खूबसूरत गजल सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में।

लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल गीत और मैं हूं आपके साथ चेतन कुमार शर्मा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं और बहुत ही खूबसूरत गजल। कलाकार हैं पंकज उदास।

कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति गजल के रूप में जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, कलाकार हैं वनिता सिंह और गुलुकार यानी कि जो गजल रचना है निदा फाजली साहब की और संगीत से सवारा है उत्तम सिंह ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

और इसी खूबसूरत गजल के साथ आज का ये गजल गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। सुबह के 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्चना।

नारायण तीर्थ की एक रचना सुनिए। कलाकार हैं नेदुनूरी कृष्णमूर्ति, एम जलजाक्षी, एम वी रमणम मूर्ति, पी सूर्या राव, एम एल नरसिम्हम, एस वसुंधरा देवी और एम जोगुलाम्बा।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

जी आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं चरण लक्ष्य कुमारन का गायन। संगत कलाकार हैं जी रघुवेंद्र प्रशांत वायलिन पर और आर नारायणन मृदंगम पर।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे चरण्य लक्ष्मी कुमारन का गायन। वायलिन पर आपकी संगति कर रहे थे जी रघुवेंद्र प्रसाद और मृदंगम पर थे आर नारायणन। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 जून 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 48 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, जिसमें आज का विषय रहेगा योग गौमुखासन। देशभक्ति संगीत का समय रहेगा सुबह 5:20।

स्वर रंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सिद्धार्थ वर्मा का सितार वादन राग अहीर भैरम में। संगत करता होंगे अभिषेक कोटनाला तबले पर। चिंतन कार्यक्रम का समय रहेगा 6:40 जिसमें विषय रहेगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों पर।

7:10 पर संगीतिका कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे संघमित्रा चक्रवर्ती के भजन। 7:30 का समय रहेगा हिंदी फिल्मों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत 8:45 पर आप सुनेंगे डॉक्टर अमृत दिशा का सितार वादन राग मियां की तोड़ी में। संगतकर्ता होंगे बलजीत सिंह तबले पर। 9:15 पर गांधी चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता का विषय होगा योग और स्वास्थ्य के विषय में गांधी जी के विचार। वार्ताकार होंगे निशा जिंदल।

0: मिट्टी दी महक पंजाबी कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 9:30, दिन में 10:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। सबरस कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 11:10 और 11:30 पर आप सुनेंगे सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जिसमें आप सुनेंगे रितेश और रजनी मिश्रा का गायन। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के 5 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। पेरिस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। उन्होंने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि एवियन में हुई G7 बैठक में उन्होंने विश्वास पर आधारित साझेदारियों के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व अनिश्चितता और व्यवधान के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में फ्रांस और भारत के बीच साझेदारी विश्वास, स्थिरता और सहयोग का एक मजबूत स्तंभ बन गई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदी में एक विदाई वीडियो पोस्ट में भेजा, जिसमें उन्होंने श्री मोदी को प्रिय मित्र बताते हुए कहा कि फ्रांस उनसे प्यार करता है। श्री मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस की यात्रा को बेहद सफल बताया। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी के सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों की आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों के आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इस बीच ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है, पर होर्मुज जलडमरुमध अभी ईरानी सेना की निगरानी और नियंत्रण में है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 5:10 और 20 सेकंड। आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय है योग गौमुख आसन।
1: आओ योग करें। आज हम जिस आसन को ले रहे हैं उसका नाम है गौमुख आसन। संस्कृत में गौमुख का अर्थ होता है गाय का चेहरा या गाय का मुख। इस आसन में पांव की स्थिति बहुत हद तक गौमुख की आकृति जैसी होती है, इसलिए इस आसन को गौमुख आसन कहा जाता है। यदि इसका अंग्रेजी में अनुवाद करें तो इसे काउ फेस पोज भी कहा जाता है। गौमुख आसन महिलाओं के लिए अत्यंत लाभदायक आसन है। यह गठिया, शाइटिका, अपचन, कब्ज, धातु रोग, मधुमेह, कमर में दर्द होने पर यह आसन बहुत अधिक लाभप्रद है। चलिए गौमुख आसन की विधि को जान लें और अगर हो सके तो साथ में कर भी सकते हैं। सबसे पहले अपने आसन पर दंडासन अर्थात दोनों पैरों को सामने सीधे एड़ी और पंजों को मिलाकर बैठें। यानी आसन पर आप सीधे बैठें और अपने पैरों को सीधे ले जाएं अपने सामने, एड़ी और पंजों को आपस में मिलाकर बैठें। हाथ कमर से सटे हुए और हथेलियां भूमि पर टिकी हुई, नजरें एकदम सामने। अब अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें, दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी जो त्रिकोण आकार में नजर आएंगे।

आप समझ रहे हैं ना, सबसे पहले अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें। अब दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी और दिखने में ये त्रिकोणाकार नजर आती हैं। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। इसके बाद बाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे लेकर दाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें, गर्दन व कमर सीधी रखें। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए अब एक ओर से लगभग एक मिनट तक करने के पश्चात दूसरी ओर इसी प्रकार करें, यानी वापस अपने हाथों को नीचे ले जाएं, वापस दंधासन में जाएं और अब बाएं पैर की जगह दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को बाएं नितंब के ऊपर रखें। बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। फिर श्वास भरते हुए बाएं हाथ को उठाकर